0: come over the years are in safe hand. This also means that the trust is absolutely focused in ensuring that the people who have trusted the entire system are intact, not that at the trust level, but also on the faith in Lord Ram and Ram Temple too. With camera person Mukesh, this is Manogya Loiwal in Ayodhya for NDTV.
1: And the heart of Ayodhya is Hanumangadi. Earlier in the day, we spoke to people in Hanumangadi on what they think about the donation theft in the Ram Mandir case. Listen in.
0: Utho, utho, utho, tahi Ram duhai, paai karo par jori manai. जैसे हनुमान जी की अगर आप पूजा कर लेंगे तो आप श्री राम को साथ लेंगे, ठीक उसी तरह से अगर आप भक्तों को साथ लेंगे तो मानते हैं कि भगवान राम तक पहुंच गए, लेकिन भक्तों का चढ़ाया हुआ चंदा अगर चोरी हो जाए तो क्या ये भक्तों का अपमान है? मैं इस समय हनुमानगढ़ी में हूँ और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो जगह जगह से आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आप जब ये चंदा चोरी की बात सुनते हैं और इसकी बात तो क्या आपके मन पर गुजरती है, क्या सोचते हैं?
2: देखिए, इतने सालों से सारे हिंदू जो है इस राम मंदिर के लिए लड़े हैं, इतना बलिदान दिया है, लेकिन जब ये चंदा चोरी की बात आती है तो अंदर से लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो पाप जो है जो श्री राम हटाने वाले थे वो नहीं हटाए लोगों के मन से। तो ये मन से हटना चाहिए, जो लालच है पैसों का वो भगवान से बढ़ के नहीं है, पैसा जो है भगवान है हमारे, तो ये लालच हटना चाहिए मन से
0: बस। SIT का गठन किया गया है, भरोसा है कुछ होगा?
2: बिल्कुल भरोसा है, हमें योगी जी पे पूरा भरोसा है, सरकार पे भरोसा है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि ये जो पैसे चोरी हुए हैं, ठीक है, इसको पैसा चोरी ही बोलेंगे, ये गलत हुआ है तो सरकार कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी।
0: भगवान राम का सामान चोरी हो जाना, उन पर चढ़ाया हुआ पैसा जो जनता चढ़ाया है चंदा, उसका चोरी हो जाना कैसे देखें?
3: ये बहुत गलत बात है। भगवान के सानिध्य में रहने के बाद भी अगर ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनको जरूर वहाँ से हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। और उनको जो भी कोई योगी जी SIT का गठन किया है, वो SIT, हमें पूरा विश्वास है कि उनको योगी जी नहीं छोड़ेंगे।
0: आप क्या सोचती हैं मैम?
4: हाँ बिल्कुल, योगी जी छोड़ेंगे ही नहीं और हमको न्याय मिलेगा।
0: अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सब सांठगांठ है सरकार की, इसलिए ऐसा?
4: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
3: अखिलेश यादव गलत बात कर रहे हैं, कोई
0: अरे विपक्ष के नेता है तो बोलेंगे,
3: कोई सांठगांठ नहीं है। जो उनको छोड़ रहे हैं, जिसने वो गलत काम किया है उसके बारे में बोलना चाहिए, साठगांठ क्या है साठगांठ?
2: ठीक है, जिन्होंने भी गलत किया है उनके खिलाफ होना चाहिए, चाहे वो सरकार में हो कि वो सरकार में ना हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, कुछ कोई भी हो, गलत गलत होता है। 1 रुपए की चोरी या 1000 करोड़ की चोरी, चोरी चोरी होती है, तो उसका होना चाहिए समाधान।
0: समाधान तो होना चाहिए मैम। आपको लगता है कि जो चोरी हुई है इससे दिल तो दुखा है ना? हाँ। कि राम मंदिर में इतने करोड़ों लोगों ने, आप भी इतनी दूर दूर से आए?
5: बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमारा एकदम मन एकदम बहुत ज्यादा दुखी हुआ है और हम अयोध्या दर्शन के लिए ही आए हैं, नागपुर से आए हैं, और योगी जी के राज में ये सब हुआ वो बहुत खराब हुआ, लेकिन इसमें उनके कुछ भी ये नहीं है और हमें पूरा यकीन है ये जो करोड़ों का गबन हुआ है तो ये योगी सरकार इसका पूरा पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पूरे लोगों के सामने इसको जरूर लाएगी।
0: आपको भरोसा है कि एक्शन होगा?
6: हाँ पक्का होगा, योगी जी एक्शन तो लेंगे।
0: योगी जी पे भरोसा है तो चोरी भी हुई तो योगी राज में हुई ना मैम?
6: चोरी हुई तो वो तो गलत लोगों की वजह से हुई ना, इसमें योगी नियत गलत होने की वजह से हुई ना।
0: क्या कह रहे हैं?
5: इसमें योगी जी क्या कर सकते ना, ये जो भी कुछ हुआ है ये अब हर इंसान के वहां तक तो योगी जी नहीं पहुंच सकते ना, ये अपने अपने मन की बात रहती है कि श्री राम भगवान के दरबार में आज इतनी बड़ी चोरी हो रही है, ये हमारे लिए बहुत दुखदायक बात है।
0: इतने भी करोड़ों मंदिर बनते हैं लेकिन करोड़ों की आस्था वाले राम मंदिर में ये होना ही तो बड़ी बात है ना?
4: बहुत गलत बात है, योगी जी के राज में ये सब तो नहीं होगा, जो भी है वो पूरा निकलेगा, जो भी है तो सच्चा।
0: क्यों हो रहा है कि चुनाव का मुद्दा बन जाएगा ये कि राम मंदिर की आस्था पर BJP की सरकार आई और राम मंदिर में ही चोरी हो रही है?
5: नहीं, मैम ये तो ये जो विपक्ष है, विपक्ष इसको किसी भी स्तर पे उठा सकती है, लेकिन आज योगी सरकार ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, सब सनातन के लिए काम किया है, तो ये तो मतलब ये तो सिद्ध ही करता है ना कि श्री राम भगवान के दरबार में ऐसा क्यों होएगा।
0: आपको लगता है, भरोसा है कि ये चोरी तो हुई है लेकिन एक्शन भी होगा?
4: हाँ जरूर होगा, योगी जी जरूर एक्शन लेंगे इसके बारे में, हमको पूरा विश्वास है योगी जी पे।
0: कर सुनाए लोगों से, पूछते हैं आप यहीं से हैं, आप क्या कहेंगे इस पर?
2: जय जय सियाराम, जय हनुमान जी महाराज।
0: जो चोरी हुई है उसको कैसे देखते हैं?
7: यहाँ पे चोरी हुई है इसके लिए हम बहुत दुखी हुए हैं, हमारे अयोध्या धाम में चोरी नहीं होना चाहिए।

0: इसके लिए उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई की जाए।
1: हमारी गुजारिश है कि ऐसी कार्रवाई हो कि आगे कोई ऐसा दुस्साहस ना करे, ऐसा कोई दुस्साहस ही ना करे कोई मंदिर में, नहीं कोई मंदिर में ऐसा कोई दुस्साहस।
2: लगता है ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कभी नहीं मिली हो इतिहास में?
1: बिल्कुल मिलनी चाहिए, यह करोड़ों सनातनियों के आस्था से खिलवाड़ है। ऐसे कैसे हुए?
3: गरीब लोगों ने यहाँ पैसा दान किया है, जिसकी हैसियत 100 रुपए कमाने के, उसने उसमें से भी 50 रुपए दिए दान जन्मभूमि राम के, तो सजा तो मिलनी चाहिए कड़क से कड़क।
2: ऐसी होनी चाहिए जो ऐतिहासिक हो?
3: बिल्कुल होनी चाहिए कि ऐतिहासिक होनी चाहिए। हर गरीब बंदों का पैसा लगा हुआ है राम भूमि के लिए।
2: आदमी गरीब हो या अमीर, लेकिन अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही वो उसी तरह का अनुदान करता है, अपनी तरफ से दान करता है। आप हनुमानगढ़ी की बात कर लें या फिर बाकी इलाकों की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब, क्या है आपके मन में कि चोरी हुई है चंदे की?
4: अब सुने तो हैं हम ना। सुने हैं कहाँ है, तकलीफ होती है भाई, हर सबकी सबका पैसा लगा हुआ है उसमें।
2: बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हनुमानगढ़ी आते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए आप लोग कहाँ से आ रहे हैं मुझे ये बताइए। आपने चंदा चोरी के बारे में सुना है, मंदिर में हुई है, तकलीफ हो रही है उसको सुनकर? चंदा चोरी के बारे में तकलीफ हो रही है कि मंदिर में चंदा चोरी हुई है?
5: देखिए, इसके बारे में बता पाना बड़ा मुश्किल है, और ये तमाम केस इस पर लगाए गए हैं, और इसका मुख्य कौन अभिव्यक्त है ये अभी फैसला जब आएगा तब ये पता लग पाएगा। इस प्रकार से किसी के ऊपर आरोप लगाना ये एक उचित बात नहीं है।
2: अच्छा, SIT का इंतजार करना चाहिए आप मानते हैं?
5: हाँ भाई, इंतजार करना चाहिए, जो भी फैसला सरकार सुनाएगी वो एक उचित फैसला होगा जो सबके पक्ष में होगा, किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार से अफवाहों में आना ये उचित बात नहीं है।
2: अच्छा, आपको लगता है चोरी हुई है कि नहीं हुई है, कि ये भी सही नहीं है?
5: नहीं, चोरी का जो अभी तक बताया जा रहा है और जो अखबारों में जो बताया जा रहा है या मीडिया के थ्रू बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन अभी जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक ये बता पाना मुश्किल है।
2: ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन सजा ऐसी हो जो कि ऐतिहासिक हो, कम से कम मंदिर में चोरी दोबारा करने की कोई हिम्मत ना करे।
6: Well, you heard from the devotees and what people in Hanumangadi have to say, but the opposition continues to raise question about the sanctity of the SIT, saying that it's the big fish which is being protected. Listen in to what the opposition leaders have to say.
7: खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें SIT बनानी पड़ी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि SIT बनी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
8: ये SIT बैठ चुकी है, लेकिन हमें SIT पे भरोसा नहीं, क्योंकि ये जो चंदा चोरी चल रही थी भगवान राम ने, ये जो चंदा चोरी हुआ ये अभी से नहीं चल रहा, ये कई सालों से चल रहा है और हजारों करोड़ का ऐसा चंदा चोरी हुआ है, क्योंकि पूरा इंटरनेशनली जो लोग हैं, जब भव्य इसमें इसका इनॉग्रेशन हुआ मंदिर का, लोग आए और लगातार लोग आते गए हैं और बहुत चंदा इकट्ठा हुआ है। कि अभी कुछ वर्षों से जितनी इसमें चोरी की गई है हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते कितने का चंदा वाकई में चोरी हुआ है, और जिस तरह से जमीन की भी धांधली हुई है तो मैं समझती हूँ कि इसमें SIT से भी बढ़कर कोई जाँच होती है तो वो करा दी चाहिए।
9: राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को। इनको कोर्ट से भी सजा मिलेगी, कानून से भी सजा मिलेगी, और भगवान राम तो बख्शने वाले इनको है ही नहीं।
10: जमपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया। अगर चोर नहीं रहते तो लड़ो ना लड़ाई, लड़ाई लड़ो लड़कर आओ भाई, मेरे नाम FIR भी होगा, मैं जेल भी जाऊंगा, पर मैं चोर नहीं हूं। चंपत राय चोर है, चोर है। इस नाते उन्होंने इस्तीफा देकर आज मैदान से भागे हैं। बड़ा लड़ने वाला मैदान से नहीं भागता, ईमानदार आदमी लड़ता है। उन निश्चित तौर से वो उन्होंने चढ़ावा चोरी किया और बहुत बड़े चोर हैं।
11: जांच शुरू हुई थी, उस जांच के पहले इनको देना चाहिए था। जब जांच शुरू हुई और जांच शुरू होते ही इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या इस्तीफा तो उसी समय दे देना चाहिए था जब घपला हो रहा था। ये कोई सिंपल मामला नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है।
6: And a fresh video has surfaced in Ketan Agarwal murder case showing Akusia and Chetan together at a local market yard cricket league match. The footage, which is now part of the ongoing investigation, appears to show the two spending time together in a public setting before the alleged crime. Police sources say Prime Akusia Goyal told investigators that plotting Ketan's murder seemed easier than telling her family she didn't want to marry. She allegedly said that she chose not to call off the wedding because she did not want to hurt her family's sentiments. Police are also set to question Sia's parents, brother, and they are preparing to record their final statements as well. Listen in to what Ketan Agarwal's father and grandfather had to say.
12: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था उसकी, घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
13: हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये धोखा आपने नहीं दिया है, ये सबसे ज्यादा बुरी बात है। लड़की वाले से हमारे बहुत पुराने संबंध है और उनको मालूम था, फिर भी नहीं हुआ। मैं यकीन पुलिस का हमें बहुत साथ मिला है, उन्होंने सब किया है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा पक्का लगता है कि बच्ची को दबा के दबाव दे के ये शादी कराने का उनका इरादा था। उसमें जो भी 4-5 जने इन्वॉल्व है उनकी भी अच्छी तरह चौकसी हो और इन दोनों को तो सजाए मौत हो।
6: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: very innocent. He's completely innocent and is being turned into a scapegoat to shield influential figures at the very top. In fact, his family has come out and said he was only working there for just 1 month. He only started working a month back.
1: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम लिखाया गया।
2: कहाँ पे?
1: फैजाबाद में।
2: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
1: किसी स्कूल में
2: जी।
1: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो, बस इतना ही जानता हूँ।
2: राम मंदिर में काम भी करते थे वो?
1: इसका हमें कुछ नहीं मालूम था।
2: तो उनका नाम बाबा कैसे आया फिर?
1: कुछ बता नहीं सकते।
2: कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार अनकल्प से आपकी?
1: हमारी बात हुई थी आखिरी 30 तारीख
2: को,
1: जब हमारा यहाँ भंडारा था।
2: अच्छा अच्छा, यहाँ कथा यही हुआ था?
1: कथा यही हुई।
2: काफी लोग भी आए थे? आपने ही भागवत सुना था?
1: हमने
2: जी जी
3: जी
2: जी।
3: आप भाई हैं? आपका क्या नाम
4: बताइए?
3: नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
4: वो सब फंसाया गया और क्या है।
3: हाँ,
4: फंसाया गया और क्या है।
3: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
4: मनीष को अभी 1 महीना काम करे हुआ है
3: बस।
4: बस
3: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
4: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं। बताइए।
3: अच्छा, पड़ोस मतलब रिश्तेदार नहीं है?
5: नहीं। भाई के बेटे।
3: अच्छा अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था?
4: काम काउंटिंग का ही था, 1 ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं।
3: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
4: अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे
3: बैंक की तरफ से।
4: जी।
3: टिन्नू की भूमिका नहीं थी?
4: नहीं, इसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी।
3: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
4: मनीष की उम्र अभी 20 साल।
3: 20 बस?
4: बस।
3: अच्छा, तो इसमें सिर्फ 1 महीना हुआ? क्योंकि
4: सिर्फ 1 महीना हुआ, सिर्फ 1 महीना, यही केवल जो है मई में काम किया बस।
3: मई में
4: बस?
3: अच्छा, उसके पहले वो?
4: उसके पहले कुछ नहीं करता था।
3: पढ़ाई?
4: पढ़ाई करते थे।
3: कहाँ?
4: अभी उसकी पढ़ाई चल रही है साकेत से।
3: साकेत से? क्या कर रहा है?
4: बीए।
3: बीए? ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं। अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
0: And obviously, all of this is getting a political reaction. We're talking about Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, who's asked, how is it that the Chief Minister, Yogi Adityanath, remained unaware of the alleged thefts that have taken place despite his frequent visits to the Ram Mandir? Intensifying his political jibe, the opposition. And there we have Akhilesh Yadav there hitting out at the Chief Minister. And the remark comes as the Chief Minister has gone ahead and said, time and again, of his zero tolerance policy, promising strict action against those found guilty. And the opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court monitored probe as far as the matter is concerned. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumours in order to malign the Sanatan Dharam. Now, the Congress has demanded that the Temple Trust be dissolved and reconstituted while reiterating its demand for a Supreme Court monitored investigation.
6: जो हमारे खुशी है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं है, हम सबकी कोई अहमियत नहीं है संविधान की। क्योंकि जिस श्रीराम जी का इन लोगों ने सहारा दिया, उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया। जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए, उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया।
7: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ना छोड़े योगी, ना छोड़े मोदी किसी को।
8: देखिए, जनता तक ये बात पहुंच गई है कि राम जन्मभूमि न्यास में बहुत बड़ा लूट हुआ है और इसके सारे खुलासे भी हो चुके हैं, और उस ट्रस्ट के एक सदस्य ने भी कहा है कि वहां चोरी नहीं, डाका पड़ा है। लेकिन इसके बाद भी सरकार लीपापोती कर रही है। उम्मीद जब तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए। ये ट्रस्ट भंग किया जाना चाहिए। अब इस ट्रस्ट पे किसी का ट्रस्ट नहीं है।
0: Let's just also switch tracks from Uttar Pradesh to Maharashtra, that's witnessing a fresh outrage over yet another exam paper leak. The teacher's eligibility test has been postponed after the question paper was allegedly leaked just 24 hours before the examination. There are three people who are accused in the case and they have been arrested. It's the Chief Minister of the state, Devendra Fadnavis, who has ordered an SIT probe, while the Deputy Chief Minister, Eknath Shinde, has also promised to invoke, as far as the mastermind is concerned, investigators say that four sets of genuine question papers were recovered, and this was recovered in Bhiwandi and were allegedly meant to be sold for 1.5 crore rupees. The opposition parties have mounted their attack when it comes to the BJP-led government. Rahul Gandhi has said that the BJP is stealing the future as far as the youth is concerned, while Priyanka has stated that the youth must raise a voice. The Prime Minister and the BJP have zero accountability is what Priyanka Gandhi is accusing the BJP of.
5: Maharashtra mein kal 28 tarikh ko jo TET hone wali hai, teachers eligibility test jo hone wali hai, उसके तहत आज यहाँ के डीसीपी जोन टू पवन बंसोड़ इनको भिवंडी इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल जो परीक्षा होने वाली है उसके पेपर बेचने के लिए कुछ लोग आज आने वाले हैं। ये पहले से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके तहत टीम तैयार करके एक ट्रैप लगाया, उसमें तीन लोगों को हिरासत में लिया है। उनके यहाँ से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेपर के चार सेट हमने जब्त किए हैं। इसमें तीन लोगों को हिरासत में लिया है, उसमें से एक आरोपी जो है यह हरियाणा का है और दो आरोपी बिहार के है।
9: या सरकारला नीटच्या बाबतीत 2024 तेज झालं, 2026 तेज झालं। जे अधिकारी जबाबदार होते 2024 त्यांना बढती दिली, आणि आता जर हा पेपर फुटला जात असेल तर म्हणजे कुठं ना कुठंतरी भ्रष्टाचार आणि पैशाचा बाजार हा लहान मुलांच्या भविष्याबाबतीत सुद्धा हे सरकार करायला लागलं असं आपल्याला म्हणावं लागेल। त्यामुळे 100% आमच्या सगळ्यांची मागणी असणार आहे की सरकारमधल्या जबाबदार नेत्यांनी तिथं राजीनामा हा दिलाच पाहिजे।
10: आज ठाणे में टीटी का पेपर फूटने से फिर एक बार बच्चों में बड़ी निराशा निर्माण हुई है। ये जो बच्चे कोई भी एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स दिन रात उनको साथ देते हैं, और ये सब होने के बाद जब एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद ये पेपर लीक होने की घटना सामने आती है तो हमें शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र जैसे राज्य में टीटी का पेपर लीक होना ये बड़ी दुर्भाग्य बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सरकार की नाकामयाबी है।
0: Switching tracks now to the conflict between the United States and Iran that's escalated sharply once again. The U.S. Central Command says that American fighter jets struck 10 military targets in Iran near the Strait of Hormuz. This was after the U.S. accused Iran of violating the ceasefire and launching a drone attack as far as its tankers are concerned. Now, the President Donald Trump has warned that Iran will never learn and said that Washington could be forced to escalate military action if attacks continue. Meanwhile, Iran claims that it has retaliated by launching ballistic missiles and drones, and these are at 8 U.S. military sites in the Gulf, including bases in Kuwait and in Bahrain. Loud explosions and emergency sirens have been reported in both countries, that's Kuwait and Bahrain, while Washington says its strikes were a direct response to the Iranian aggression against commercial shipping. The Iran is warning of a crushing response to any further action taken by the United States. With that, we're slipping into a short break. We're going to keep covering what's happening as far as the Iran-US peace talks and now this retaliation that we're seeing and the attacks that we've seen in the last 24 hours. That and a lot more coming up on the other side. For now, slipping into a short break.

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
1: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन।
2: Cops recreate the crime scene at the fort where Ketan Agarwal was pushed from. Shocking details emerging in the Ketan Agarwal murder case. Sia and Chetan googled ways to kill him, visited the fort before the crime for a pre-murder rehearsal. As the Tamil Nadu Chief Minister Vijay, they are leading the Child Health Initiative, inaugurating the polio campaign. Over 43,000 immunization centers have been set up. More than 52 lakh children to be covered. And Akhilesh Yadav's big attack as far as the Chief Minister of Uttar Pradesh is concerned, questioning Yogi Adityanath's visits to the mandir, asking if those visits were meant to oversee the theft.
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जनभागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार

बड़े हैं, इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है, और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया, और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु

के छोटे छोटे बच्चे फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी
नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनकी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए
एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट बीजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: Well, listen, big breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. Well, U.S. has tracked Iran again, is what we're learning so far, as U.S. targets Iran military sites. The U.S. has retaliated for the tanker strike that took place earlier. Iran's surveillance sites have also been targeted, and Iran has now been accused of a ceasefire breach. The latest updates that we're bringing to you at this hour is the fact that U.S. has in fact struck Iran again. U.S. has struck Iran's military sites. It's retaliated for the tanker strike that took place earlier. Iran's surveillance sites have also been targeted, and Iran, most importantly, has now been accused of a ceasefire breach. My colleague Pradeep Datta joins us on the broadcast to shed more light on this. Pradeep, an important update now coming in as U.S. has in fact struck Iran. Help us understand what are some of the allegations that U.S. is now leveling towards Iran.
6: This is a retaliatory attack from the U.S. side, and the second time during the last 2 days we have seen that the U.S. has targeted Keshem Island and also Sirik coastal area. And explosions are being heard in areas close to the Strait of Hormuz where they have...
7: The story we saw before the break is of a girl who could be provided a second chance at childhood and at life. But sadly, that is not the reality of thousands of others. Countless young girls are quietly pushed into marriages long before their minds and bodies are ready for the crushing weight of marital and domestic responsibilities. Often married off in small distant towns, they eventually migrate, forced to make a tight living in a big city. And the most startling part? Their stories are unfolding right under our noses. Meena was only 16 when she was forced into marriage with a 19-year-old boy in an Ahmedabad village, Katihar, Bihar. In a single night, her childhood was stolen and replaced by a systemic violence of child marriage. An experience that is in reality institutionalized child rape, leaving her with enduring emotional and physical trauma that defines her life to this day.
8: मेरे शादी इसलिए हुई थी, मेरे पापा किसान थे, मैं चार बहन एक भाई, सबसे बहन बड़ी मैं हूँ। तो जैसे कि मेरे साथ जो लड़की रहती थी उसका शादी तो 13 साल में, 14 साल में, 15 साल में हो चुके थे। तो उन्हीं के वजह से हमारे परेशान बोलते थे कि सबके शादी हो गई, आपके लड़के की शादी भी करवा दो, रिश्ते आ रहे थे क्यों नहीं करवाती है। तो रिश्ते हमारे घर में डेली आते जाते थे। तो हमारे दो बहन थी, एक बीज वाली में, तो उसके मेरे पापा कहना था कि दोनों बेटी की शादी एक ही बार करवाएंगे, दोनों बेटी की शादी। लेकिन एक साथ हुई नहीं, मेरे शादी पहले हो चुकी ना। तो मेरे शादी हुई थी 2012 में, तब मैं 16 साल की थी। अब जिस टाइम मेरी शादी हुई थी मेरे को बहुत रोना आते थे, इतनी रोती थी जो हमारे पापा मेरे से जो मिलने जाती है ना, हमारे शादी जब विदाई होती है तो जो मरुआ होती है हमारे में, मरुआ में, तो उसी में जब मिलती थी हम शादी में अचानक बेहोश हो गए थे कि हमारे कुछ पता नहीं, इतनी दूर में शादी हो रही है, कुछ भी मेरे को पता नहीं है उसके बारे में। फिर मैं तो उस मेरी तो विदाई हो चुकी है, जब मेरी शादी हो के गई लेकिन परिवार मेरे को अच्छी नहीं मिला, बिल्कुल अच्छे परिवार नहीं मिला।
9: आगे ये प्रथा ख़त्म हो उसके लिए ये भी समझना है कि हमारी जो बच्चियां हैं उनको इससे क्यों बचाना है। तो आपने क्या तकलीफ़ें झेली जिससे आप बच सकती थी?
8: छोटी उम्र में जितनी शादी होती है इतनी तकलीफ होती है, हर तरह की बीमारी पैदा होती है, हर तरह की बीमारी पैदा होती है। जैसे कि बहुत मतलब शरीर कमज़ोर हो जाती है, और पता है जिस उम्र में उसे खाना चाहिए, जिस उम्र में हर चीज़ उसको ज़रूरत होती है। पहले क्या होती है हमारे में बोलता है नहीं, सास पति ससुर जो खाएगा तभी खाना बना, उसको इंतज़ार देखते देखते शाम भी हो सकता है, इसीलिए उसको शरीर में तो कमज़ोर हो जाती है, तो उसको धीरे धीरे बीमारी पैदा होने लगता है, ऐसा ही होता है। तो हमें सोचे हैं हमारे साथ जो हुआ है तो हमें अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगा। ये
9: माँ बनना आपके लिए कैसा था?
8: तो मेरा बहुत तकलीफ था। मेरे बहुत तकलीफ था, जो मैं ना बैठे पाती थी, ना सही से खाना खाने पाती थी, ना कहीं चलने पाती थी। तो वो शुक्र है कि मेरे मम्मी, तब मेरे पति अच्छी थी, जे मेरे पेट में बच्चा आती मैं मेरे को बहुत तरह की बीमारी हो गई थी। तो मेरे पति ने पैसे उसे दे के मेरे के डॉक्टर में दिखाया था, प्राइवेट डॉक्टर में दिखाया था, ऐसे सरकारी के डॉक्टर में नहीं दिखाया था, प्राइवेट में डॉक्टर में दिखाया था। तो जो कुछ किया था तब उसको ये नहीं सोच था कि मेरा लड़की हुआ, ये नहीं चाहती थी, उसको तो लड़का पसंद था कि घर में सारे के लड़का है। तो इतनी खुश से मेरे पीछे पैसे खर्च किया था, जब से मेरी लड़की हुई है तब से उसका मूड खराब हुआ। तो मैंने इसलिए दीदी ये भी ठान लिया कि अगर जो लड़की से सब कोई नफरत है तो मैं एक ही बच्चा

0: Salíamos. Ya de noche y día y niño.
1: The trauma of child marriage does not end when childhood does. Its scars bleed deep into adulthood. Because this practice is so deeply entrenched in our social fabric, it normalizes violence to such an extent that victims often internalize the abuse, believing it is simply their fate. Yet, there are a brave few who find the strength and courage to pick themselves up and start their lives afresh. Women like Sunita, who rescued herself, traveling more than 1,000 kilometers away from her marital home to escape a life of relentless abuse and violence.
2: जब आपकी शादी हुई थी तब आपके क्या हो रहे थे?
3: 15 से 16 साल की उम्र।
2: पति का थोड़ा शुरू शुरू में स्वभाव ठीक था, उसके बाद मतलब धीरे धीरे वो बदलते गए थे। पी खा के आ जाती थी, जैसे कभी हम छोटे थे तो पहले खाना खा लेते थे तो उस बात पे भी झगड़ा करने लगता था कि तूने क्यों खा लिया, हमारी इधर तो पति से पहले खाना नहीं चाहिए था। और हम अपनी मम्मी के घर में तो बन गई, हम खा लिए, हमारी मम्मी के यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। और यहाँ मतलब खाना नहीं, जब 12 बजे 1 बजे आवे तो भूखे बैठे रहो रात में, वो खाएंगे उठेंगे तब उनके थाली में खाओ। तो मैं खा लेती, जैसे भूखी थी छोटी थी नहीं समझती, बन गई खा लिए लेकर तो गुस्सा करते थे। तो मुझे शादी के बाद घर में नहीं रखा था ज़्यादा देर तक, मैं मतलब किराए पे रहती थी।
4: अच्छा।
2: हाँ, कभी पंजाब चले गए, कभी कोलकाता में भी रह के आए। हम बहुत कंपनी था, सिलाई कंपनी, तब कटिंग मास्टर थे हम, तो कंपनी खोला था कोलकाता में। फिर वहाँ से हम फिर वापस दिल्ली आ गए, दिल्ली से हम नोएडा में रहे थे, गाजियाबाद, गाजियाबाद से फिर हम दिल्ली गए ससुराल में। तो वहाँ भी सब लोग मतलब वही पी खा के लड़ाई झगड़ा, कभी पुलिस आते थे कभी ये आते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, मैं अपनी बेटी को लेकर फिर मैं यहाँ आ गई और तब से मैं यहाँ अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक, पहले जैसे हाथ फैलाना पड़ता था दूसरे के आगे, ये खर्चा को पैसा दे दो, पहनने को कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अब खुद काम करती हूँ तो जो मर्जी वो कर, बाद में पैसा भी आता है, अच्छा भी लगता है।
4: तो जैसे आपकी बेटियाँ भी 12th पास करे, तो आप उनके बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या
2: मतलब इसको कुछ ऐसा करेंगे जो खुद अपनी पैर पे खड़े हो जाए। जैसे सोचिए मैं दूसरे के घर में काम करे, कल जाके इसको भी ना करना पड़े कहीं, उसको खुद अपनी कमा के खुद रह सकती है।
4: अच्छा।
2: जैसे मेरा संग हुआ, कभी हम सोचिए किसी के संग भी हो सकता है ऐसे, तो हम चाहते हैं हमारी बेटी को संग, किसी की बेटी के संग अगर हो तो वो अपनी इतना कर ले जो अपनी कमा खा ले।
1: The stories of these women don't exist in a vacuum. They intersect with our comfortable lives every single day. They are the people who keep our cities running. They cook our food, clean our homes, iron our clothes, sell us daily staples, and provide countless other services. And we, who exist in their immediate circles, can no longer afford to be passive bystanders.
4: अगर आपको पता चलता है कि कहीं पर बाल विवाह हो रहा है, आपको इसके बारे में पता चला है, तो आप उसको कैसे रोकेंगे?
5: मैं अपनी तरफ से पहले प्रशासन की हेल्प से भी उस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करूंगा।
6: मैं जब तक रोक सकूंगा, जब तक पुलिस ना आए तब तक
7: रोकेंगे, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे, अगर वैसे मान जाते तो ठीक है।
8: अगर कहीं होता है तो उसमें हम उसको न करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा कि न हो।
1: While we cannot undo the past for the women who were married off as little girls decades ago, you and I hold the power to change the future for the girls around us today. You can make a difference right now. Stay alert to the warning signs in your own ecosystem. Talk to your neighbors, your domestic staff, the families around you. If you sense a young girl's future is in danger, initiate that difficult conversation and counsel the parents. And if they refuse to listen, know that the law is on your side. Step up and report it immediately. Dial the numbers on your screen to connect with the helpline or inform your local police. Look around. ask the hard questions, have the conversation. Your one act of vigilance can rescue a life and save a childhood.

0: पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। हमारा विश्वास है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है। हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है। फ्रेंड्स, विकास साझेदारी हमारे संबंधों की मजबूत पहचान रही है। भारत हमेशा की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान हमने 175 मिलियन डॉलर के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत सोशल हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्किलिंग, फूड सिक्योरिटी, शिक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। सेशल के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सहयोग भारत की विशेष प्राथमिकता रही है। मुझे खुशी है कि हम सेशल के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग में योगदान दे रहे हैं। आज प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सेंटर की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी की जा रही है। हमारा विश्वास है कि यह सेंटर आने वाले समय में सेशल के युवाओं के कौशल, रोजगार और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कोविड के मुश्किल समय में वैक्सीन की आपूर्ति से हमने एक मित्र के रूप में अपना दायित्व निभाया। आज जन औषधि पर किए गए एमओयू से सेशेल के लोगों को क्वालिटी और एफोर्डेबल मेडिसिन उपलब्ध कराने में सहयोग मिलेगा। हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से सेशल की मेडिकल केयर को और सशक्त बनाने के प्रयास करते रहेंगे। ऊर्जा और क्लाइमेट एक्शन में भी हमारा सहयोग निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन सहित क्लीन एनर्जी के नए क्षेत्रों में भी विन विन सहयोग जारी रखेंगे। ब्लू इकोनॉमी हमारे संबंधों का एक स्वाभाविक और स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है। हम ओशन ऑब्जर्वेशन, मरीन साइंस और कोस्टल मैनेजमेंट में भारत की एक्सपर्टाइज सेशल के साथ साझा करेंगे। स्पेस के क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस विषय पर आज दोनों पक्षों के बीच एमओयू किया गया है। हमारा मानना है कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से अभिन्न है। हम इस दिशा में अपना करीबी सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, भारत सेशल संबंधों की असली शक्ति हमारे पीपल टू पीपल टाइज हैं। हमारी आज की चर्चाओं से यह संबंध और मजबूत होंगे। दोनों देशों के स्पोर्ट्समैन और एथलेट्स के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हम संस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे। सेशल में योग और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रियता हमारे सांस्कृतिक जुड़ावों को दर्शाती है। इसी भावना के साथ हम दोनों देशों के लोगों, विशेषकर युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयास जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. Excellency, हमारे संबंधों के पिछले 50 वर्ष गहरे विश्वास और साझा प्रगति के रहे हैं। आने वाले 50 वर्ष इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के होंगे। मैं एक बार फिर भारत के प्रति आपकी मित्रता को और हमारे संबंधों के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेसी बोकू।
1: Your Excellencies, ladies and gentlemen, this now brings us to the end of today's ceremony. I wish to sincerely thank you all for your presence and participation in this important.
2: Prime Minister Modi there with the Seychelles leader there, holding talks on wide-ranging discussions with the President of Seychelles, with both leaders reviewing the progress of bilateral ties and exchanging views on regional and global development. And that is after he has been accorded with, of course, that ceremonial welcome. And today marks the 50 years of the ties between India and Seychelles, and that is getting strengthened with this visit, the first visit in 10 years of an Indian leader in Seychelles. So a historic visit there of Prime Minister Modi there to mark the occasion of their, in fact, National Day. This is their Golden National Day, which is being celebrated in Seychelles. And there we have S. Jaishankar, our Foreign Affairs Minister there as well. And here we have, of course, you know, celebrations that are taking place. So the meeting comes as India seeks to deepen engagement with strategically located partners in the Indian Ocean region, where maritime security, connectivity and development cooperation have become key pillars of our foreign policy. Let's get you breaking news coming in. As far as the death of Ketan Agarwal is concerned, the news is tightening around the two accused, Sia and Chetan. Sources are saying that both of them wanted to get married. That is the reason why they went ahead and executed the plan to eliminate Ketan Agarwal. Her fiancé, she had got engaged in the month of February. But according to sources, Chetan wanted time. Now, from what we are picking up from our sources is that Chetan and Sia started seeing each other through, they met through her brother, and they met in the month of November last year. They started seeing each other. Now, Chetan wanted time. He wanted time before they could settle down in a relationship of matrimony, and which is why Chetan wanted time to build his career, and therefore they needed to buy some time. In fact, he was demanding that he needed about 3 years time in order to settle down work-wise before he could marry her, which is why they decided to buy and gain that time by going ahead and killing Ketan Agarwal. The plan was to delay the marriage of Sia for years. Ketan murdered. In fact, he was murdered only. The whole and sole reason was because Sia could not tell her family and she needed to buy time. This man needed time to settle in his career before he could marry the girl. And that is why they decided that if they eliminated Ketan Agarwal, that would buy them time, because she would portray that she, of course, is getting over the death of her fiancé, and that could perhaps give her the couple of years that this couple needed in order to avoid Sia settling down in any other alliance, and which is why they decided to get rid of Ketan Agarwal.

0: जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं। अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है आप लोग को क्या लग रहा है, मतलब
1: All right, and we move on to some other stories that we are tracking. The Ketan Agarwal murder investigation. It has taken a dramatic turn now, yet again, with the Pune police today taking both the accused, the Sia Goel and Chetan Chaudhary, to the Lohagarh Fort. And this is the crime spot. And this was done to recreate the crime scene. The police claims that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. The investigators also claimed the first murder attempt was planned on the June 14th. The accused then allegedly searched online for murder methods, planned disguises and tried to delete chats after the incident. What the police sources have also said is that investigators are also probing a possible motive behind the murder. They claim that Chetan wanted 3 years to build his career with the allegedly plan to delay Sia's marriage. And this was done to buy time. Meanwhile, what the police have also done is they've seized Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
2: Been recreated. The accused has taken us to the places, like how it all happened, whose role was what in this whole incident. That's all.
3: आज सुबह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है. सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया.
4: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
3: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया.
5: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी. मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं. तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है.
6: मुझे जस्टिस चाहिए फॉर केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं. सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए. थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया. सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैनल किया उन लोगों ने. थैंक्स.
1: And with that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere because news and updates continue on the other side.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
6: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
7: Really?
6: Fashion that made you gag. Films that made you

0: And a massive political and religious storm has hit Ayodhya. The Ram Trust has confirmed that Champat Rayan and Al Mishra have submitted their resignation, while the role of Tinu Yadav is still under scanner. NDTV has learned from top sources that cash has been recovered from key accused. While the trust deliberates on these exits, they also assured people at large that donated ornaments are safe and accounted for. Investigation points directly to voucher handler Anukalp Mishra as the mastermind. Investigations further reveal that he manipulated donation records, routed funds, blocked CCTV cameras during counting process. As probe intensifies, family of the accused Manish Yadav has claimed he is completely innocent and he is being framed in this case. All right, we'll try and connect with my colleagues and get more details on the story. Ajay Dubey is joining us live from Ayodhya. Ajay, a perspective from you from the city of Lord Shri Ram. Give us a sense about where the investigation stands right now. The accused family has also spoken up. What is it that you're hearing from different sides? Ajay.
1: See, in this case, we have seen FIR against 8 individuals and one unknown. And after this FIR, we have seen arrest and now resignation of Champat Rai and Anil Mishra. Today in Ayodhya, police reached to the houses of 8 the individuals who are arrested. They have done their inquiries. They have asked questions to the family member, to the neighbors. They have asked various questions regarding their earnings, their financial values, their capital, whatever family owns, assets are. So this is what is happening today. That is being investigated by the police. And important most part is that this investigation is not done yet. They will looking for more leads. They are looking after more individuals who are connected towards, specifically towards Tinu Yadav. He is being informed as the key person who is behind most of the wrong things happening inside Ayodhya temple. So this is what is happening right now. Police reached to the houses of all the eight individuals, and they have done their investigation today also.
0: Ajay, thank you so much, Ajay, for putting all of that into perspective. We'll of course keep coming back to you for more on that story as the probe intensifies. The Ram Mandir donation theft row has now snowballed into a full-blown political slugfest as expected after Akhilesh Yadav questioned the motto of the BJP. He has stated that donation first is the motto of the BJP and not nation first. He's also said that neither religion nor shame is left in the Saffron Party. Yogi accused the Samajwadi Party of firing on Ram devotees during his tenure, reminding that the party's politics revolves around appeasement, asked Akhilesh to seek atonement by visiting Ram Lalla, and asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of Samajwadi Party. The opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court-monitored inquiry. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumours to malign Sanatan
2: Dharma. क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
3: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़। इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
4: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो आप लोग के कहाँ हो गया, बताइए हो पाएंगे? श्री राम की को जगा दिया, जो हमारे खुशी है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं, हम सबकी कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्री राम जी का इन लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को उन्होंने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया।
0: Let's cut across to some breaking news coming in, and this is the latest update on Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan as he spoke exclusively to NDTV on the launch of VBG Ram from 1st July 2026. Let's listen into this conversation. He has said that all preparations are being done.
5: दुनिया के सबसे बड़े रोजगार कानून मनरेगा की जगह लाए गए नए विकसित भारत जी राम जी कानून को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एनडीटीवी में आपका स्वागत।
6: धन्यवाद। आप
5: आपने पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी की है, 1 जुलाई से क्या प्रोटोकॉल होगा, किस तरह आप इसको लागू करेंगे?
6: तैयारियाँ सारी पूरी हो गई है, इसकी नोटिफाई हो गई है, राज्यों ने भी कर दी, लगभग अधिकांश राज्यों ने, बाकी प्रक्रिया में हैं और इस ग्रामीण विकास सम्मेलन में हम इसको पूरी तरह से इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना लागू हो जाएगी। 100 के बजाय अब 125 दिन का रोजगार हमारे मजदूर भाइयों और बहनों को मिलेगा। जितनी फॉर्मेलिटीज थी राज्यों के साथ मिलके हमने पूरी कर ली है, हम पूरी तरह से तैयार हैं इस योजना को लागू करने के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग का काम, पंच सरपंचों को भी एजुकेट करने का काम, ग्राम सभा कैसे विकसित ग्राम प्लान बनाएगी उसका काम, फिर हमने जो 4 तरह के मेजर काम हाथ में लिए हैं 4 श्रेणियों के, उनके बारे में जानकारी ये सब दे दी गई और अब पूरी तरह से तैयार है। 30 जून को मनरेगा का समापन होगा और 1 जुलाई को विकसित भारत जी राम जी योजना का प्रारंभ शुभारंभ।
5: यानी जो नए पहचान पत्र दिए जाने हैं ग्रामीण मजदूरों को, वहां से लेकर फंड के आवंटन तक, इसकी तैयारी राज्यों ने कर ली?
6: सभी राज्यों ने, एक आध अपवाद है जो अपने हिस्से का बजट प्रोविजन करना था वो कर लिया। हमारे जॉब कार्ड जो आज हैं मनरेगा के, जब तक मतलब दूसरे राज्य वो उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं अपवाद स्वरूप कोई ऐसी बात है तो ये भी काम आ जाएगा। उनके सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण है हमारी। भारत सरकार ने भी 1,51,282 करोड़, ओवरऑल 95,600 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन हमने जो फंड एलोकेट किए हैं वो सब राज्यों को कर दिए गए हैं, उनको इंडिकेट कर दिया गया है और राज्य भी तैयार है और केंद्र तैयार है।
0: And now shifting our focus to the big twist in the Pune murder case, Ketan Agarwal's father met Chief Minister Devendra Fadnavis today seeking justice and strict action. Fadnavis has assured swift justice, approved a fast-track trial, appointed Ujjwal Nikam as a special public prosecutor in this murder case. Ketan's father said that the Chief Minister has assured them. Meanwhile, Maharashtra Chief Minister Fadnavis expressed shock over the tragedy and said that we must explore what are the reasons behind such cases, such crimes. Investigators are probing whether Chetan blackmailed Sia or there was any angle of threatening to expose their relationship. Police is also examining the bank accounts of Sia, the statements for suspected money transfers to Chetan. Sia reportedly told investigators that she did not want to marry Ketan and alleged that he pressured her using his family's influence.
7: बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे थे, मेरे बेटे से भी बढ़ के, यानी मेरा केतन जी था, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
8: केतन अग्रवाल केस में आज पहली बार सिया के माँ बाप यानी प्रवीण जी और पूजा जी, ये एक हॉस्पिटल के रूम से हमारे साथ हैं। मैंने अभी भी एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया, लेकिन एक सवाल मैं वापस, या एक सवाल बार बार मेरे तहे दिल में आता है जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचे। पुलिस ने जो कहा है वो हम लोगों ने कई बार देखा है, और एक पत्रकार के तौर पर मुझे भी लगता है कि इसमें इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में दम है। आपको क्या लगता है इसमें जो जो ये आरोप लग रहे हैं आरोपी के साथ, या ये जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए?
9: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए।
8: सख्त से सख्त मतलब क्या?
9: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की
8: कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
9: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए, मैं तो बोलूंगा।
8: आप होशो हवास में?
9: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ, जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
8: पूजा जी आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है?
7: मुझे भी यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी चाहिए।
8: नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी आपकी बेटी,
7: आरोपी मेरी अगर आपकी बेटी हो, तो मेरी
8: अदालत में साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया,
7: ठीक है ना, मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो। आप एक माँ बोल रही है ये।
0: My colleague Saurabh Gupta joining us live from Mumbai to give us more perspective and details about the ongoing investigation. Saurabh, give us a sense about where is the investigation so far. A lot of things are speculative at this point in time. Nothing is officially on record, but source-based information. But what are you picking up from your connections and your networks about the ongoing investigation?
10: Well, my colleague Sujata has largely been reporting on this, and of course she's shared that information about how the digital disappearance of the main accused, and at least being seen as one of the main conspirators in this case, was actually seen as an alibi by the accused. But it has turned out that this is something that the police are now investigating, because it seems very off the mark that someone would suddenly go off the digital radar. And they're saying that all of these steps that he took, thinking they were alibis, is something that the police is likely to court as evidence to show his role in this case. Apart from that, senior officers are involved in the questioning, and that's because these are people who seem to have planned this crime very well and who seem to have gone there, recce'd this. So all of this is part of the investigation at this point.
0: To perspective, of course, we'll keep coming back to you for more on that story. Was this a cold-blooded murder? What are the details that are emerging? Let's take you through some shocking revelations that have been made so far. Now, the timeline of the events is important because this is a murder investigation, officially speaking. Sia and Chetan, they met during a Diwali party back in 2025. Allegedly, Sia plotted Ketan's murder with Chetan. That is what the second FIR is saying in this case. According to the FIR, Sia and Chetan spoke about more than 2,000 times over the last 6 months. These are the details that have emerged. But this is spread over a period of 6 months since January this year. Allegedly, there's a CCTV footage that has also come out that it was Chetan who was dressed in a hoodie in the heat, and he raised suspicion. There was a man who was trailing Ketan, and the question was that who was that man? Was it Chetan who was trailing Ketan? Now, Sia's first attempt to kill Ketan was on the 14th of June. That is what family has said. The family has claimed that this was not the first time. Even earlier, they had suspected something like this was happening. Sia had convinced Ketan to visit Fort again after she couldn't kill him. This is what an allegation that the family has made in the FIR. It is recorded in the FIR. Sia and Chetan met at a cafe to plot Ketan's murder. This is another thing. One of the key things that the police has gathered so far in the case is that just a few days, about 24 hours before this incident happened, Sia and Chetan had met at the cafe. What exactly did they discuss? We don't know that. But there's a CCTV footage that shows that both of them met, raising suspicion of a possible conspiracy. Now, Sia's plan was to kill Ketan on a family trip to Mahabaleshwar. This is once again something that the family has claimed. Once the family has claimed this, it becomes the part of the FIR, the first investigation report, of course, subject to being proven in a court of law. Sia put up Instagram stories mourning Ketan's death to evade suspicion. That is what the family is saying. Ketan's sisters, their suspicion led to Sia's interrogation and the subsequent arrest in this entire case. All right, we'll keep tracking this story and much more. But for now, we're slipping into a very short break. Stay tuned, stay with us.
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।

0: And a massive political and religious storm has hit Ayodhya. The Ram Trust has confirmed Champat Rai and Anil Mishra have submitted their resignations. The role of Tinnu Yadav is uncanny. He's one of the key accused. NDTV has learned from top sources that cash has been recovered from some accused, including Tinnu. While the trust deliberates on these exits, they have also assured all devotees that the donated ornaments are safe and accounted for. Investigation points directly to voucher handler Anukalp Mishra as the mastermind. Investigation further revealed that he manipulated the donation records and routed funds and blocked CCTV cameras during the counting process. As the probe intensifies, family of the accused has claimed that he's completely innocent and he's being turned into a scapegoat. We get you some ground reports. Have a look.
1: The Ram Temple donation theft case is being opened with layer by layer, and amidst these layers, there's a new layer that has walked into this entire special investigation team's periphery, which clearly means that the framework of the vehicles that were allowed into the Ram Temple under special permissions is now in the purview of this special investigation. Keeping in mind that there were certain vehicles that were not mentioned in the log sheet or were mentioned with a specific instruction of not being checked at regular intervals. Why were such instructions given? What was in mind? Who was the person behind it? And why was this considered as an SOP for certain vehicles? Was it being used for ferrying something inside or outside the Ram Temple is yet to be ascertained. What was being carried is yet to be ascertained. However, amidst all this, there's one thing is for sure, that the SIT has much more to investigate, not just inside the temple, but also related to the SOPs that were flouted regularly on ground zero in the temple. With camera person Mukesh Kumar, this is Manogya Loiwal in Ayodhya for NDTV.
2: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया.
3: कहाँ पे?
2: फैजाबाद में.
3: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
2: हाँ, किसी स्कूल में
3: जी.
2: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो. बस इतने जानता हूँ.
3: राम मंदिर में काम भी करते थे वो?
2: इसका हमें कुछ नहीं मालूम था.
3: उनका नाम बाबा कैसे आया फिर?
2: कुछ बता नहीं सकते.
3: कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार अनुकल्प से आपकी?
2: हमारी बात हुई थी आखिरी 30 तारीख.
3: 30 तारीख को
2: जब हमारा यहाँ भंडारा था.
3: अच्छा अच्छा, यहाँ कथा यही हुआ था?
2: हाँ, कथा यही हुई.
3: काफी लोग भी आए थे? आपने ही भागवत सुना था?
2: हमने. मैं अभी
3: जी जी जी जी.
4: आपको क्या नाम
5: बताइए?
4: नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
5: वो सब फंसाया गया और कह रहा
4: है. हाँ,
5: फंसाया गया और कह रहा है.
4: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे
5: हैं? मनीष को अभी 1 महीना काम करे हुआ है.
4: बस
5: बस.
4: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
5: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं. बताइए.
4: अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है?
6: भाई के बेटे.
4: अच्छा अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए. और क्या वहाँ काम क्या था?
5: काम काउंटिंग का ही था. 1 ही महीना हुआ था. बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं.
4: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
5: अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे.
4: बैंक की तरफ से
5: जी.
4: टिन्नू की भूमिका नहीं थी?
5: नहीं, उसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी.
4: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
5: मनीष की उम्र है 20 साल.
4: 20 बस?
5: बस.
4: अच्छा, तो इसमें सिर्फ 1 महीना हुआ? क्योंकि
5: सिर्फ 1 महीना हुआ, सिर्फ 1 महीना. यही केवल जो है मई में काम किया बस.
4: मई में
5: बस?
4: अच्छा, उसके पहले वो?
5: उसके पहले कुछ नहीं करता था.
4: पढ़ाई?
5: पढ़ाई करते थे.
4: कहाँ
5: भी उसकी पढ़ाई चल रही है. साकेत से.
4: साकेत से? क्या कर रहा है?
5: बीए.
4: बीए. तो ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं.
5: ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, ऐसा कुछ नहीं.
4: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
0: Well, let's tell you more details about what the investigation has revealed so far. Who is the mastermind in this entire case? Let's talk about Anukalp Mishra, the alleged mastermind. He is accused in the temple donation theft. He handled the vouchers. He handled cash processing. All of this was related to the trust and the money that was coming in. Further, member Anil Mishra is also under scanner. Brother-in-law of the co-accused, Love Kush Mishra, they are also under scanner. These are the 8 accused we are talking about. There have been recoveries, worth lakhs that have been made from their residences. The key question is, does the nexus run deeper, or this is all? There are various devotees who have come on record who have said that some of the facts, some of the artifacts or something that they offered to Lord Ram is something that they have not got a voucher of, if they are unaccounted for. Well, the Ram Mandir donation theft row has now snowballed into a full-blown political slugfest. After Akhilesh Yadav questioned the motto of the BJP, he stated, and I'm quoting, "Donation first is the motto of BJP and not nation first." He's also said that neither religion nor shame left in BJP. Yogi accused the Samajwadi Party of firing on Ram devotees during his tenure. He said that the party's politics revolves around appeasement. Yogi Adityanath also asked Akhilesh to seek atonement by visiting Ram Lala Temple and asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition continues to demand a Supreme Court monitored probe into this matter. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumours to malign Sanatan Dharma.
6: क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
7: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
8: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो वो आप लोग के कहाँ हो गया, बताइए हो पाएंगे? जो श्री राम की को जगा दिया, जो हमारे तुलसी है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं है, हम सबकी कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्री राम जी का इन लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
9: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
0: एंड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर विजय इज ऑन एन इनॉग्रेशन स्प्री जस्ट डेज आफ्टर फ्लैगिंग ऑफ 300 न्यू गवर्नमेंट बसेस टू बूस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पर्सनली ज्वाइनिंग एन एंटी ड्रग अवेयरनेस मैराथन। विजय हैज नाउ लॉन्च द नेशनल पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन। Now, the state has set up over 43,000 vaccination centers to cover nearly 53 lakh children below the age of 5, with more than 2 lakh health workers, teachers, Anganwadi staff and volunteers deployed across the state. From healthcare, public transport to youth awareness, the Vijay government is pushing a series of high visibility public initiatives to boost the welfare promise that he had made to the people of the state. And another DMK ally has dumped Stalin. This time, it's Duraivaiko's MDMK. DMK's alliance partner for about 9 years, MDMK is back to TVK's Vijay in the upcoming by-election and local body polls. Speaking exclusively to NDTV, MDMK chief Duraivaiko lashed out at Stalin's party, claiming that the 9-year-old ally only insulted MDMK and it was about time they snapped ties. Further highlighting their political ambitions, MDMK chief said that they are mulling on permanent alliance with Vijay's TVK, claiming that Tamil Nadu CM is humble and fair. With MDMK's breakup with DMK, it's the sixth setback that Stalin has got since Vijay came to power in Tamil Nadu. Vijay's coalition is about 120 now.
10: You've snapped ties with the DMK.
11: Yeah.
10: Are you heading towards the TVK alliance?
11: In our heart of hearts, we are preparing our mind to extend the support to TVK and Honorable Chief Minister, Mr. Joseph.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आतुर मसाला। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
3: देश का टायर, जेके टायर।

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आकर मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
4: देश का टायर जेके टायर। जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
5: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
4: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: कस्बा।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरी राजा,
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर। जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
5: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
4: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
0: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
1: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
6: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
7: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
8: High rate, check the audio, high rate, check the audio.
6: Let's do it, let's do it, let's start.
9: Breaking story, we're jumping straight into it.
6: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
10: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
6: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
11: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
10: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
6: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
12: एनडीटीवी टॉप्स द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट, इंडिया रीच रैंकिंग्स अगेन, नंबर वन इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन न्यूज रीच फॉर द सिक्स्थ ईयर इन अ रो। ऑडियंसेस कंटिन्यू टू चूज एनडीटीवी अक्रॉस टेलीविजन एंड डिजिटल। एनडीटीवी ट्रस्टेड अक्रॉस एवरी स्क्रीन। The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
13: so many attacks,
12: the chaos and cries of disaster.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आर्थर मसाला।
3: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
4: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
3: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना
2: बाल्टी,
1: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना।

0: स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर। जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
5: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
4: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
6: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
8: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
9: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
10: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
11: High rate, check the audio.
9: Let's do it. Let's start.
12: Breaking stories, we're jumping straight into it.
9: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
13: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
9: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
14: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
13: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
9: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
8: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
15: So many attacks.
8: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
15: It's incredible.
8: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
15: Welcome to Left, Right, and Center.
8: Hard facts.
15: War struck country.
8: Hard questions.
15: In the Ukraine.
8: 30 years of trust.
16: In the Kargil area.
15: North Ukraine.
17: In France. In Italy.
15: At Srinagar.
17: I am Iskandar.
15: Vishnu Shom for NDTV.
8: Vishnu Shom. Only.
6: And welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. SIT intensifies probe in Ram Mandir theft case. SIT to probe vehicle entry logs, lens on vehicles exempted from checks. Sources say attempts were made to dispose of the stolen funds. UP CM Yogi versus Akhilesh in fierce war of words over Ram Mandir theft. Yogi reminds Akhilesh of bullets fired on Ram devotees. Akhilesh calls the theft mockery of faith. And cops recreate crime scene at Lohagarh Fort. Shocking details emerge in Ketan murder case. Allegedly, Sia and Chetan googled ways to kill. The two killed Chetan to delay Sia's marriage, investigation claims. And nature's fury batters Sikkim. Bridge washed away, road connectivity hit, and villages isolated after bridge collapse. West Asia tensions flare again. U.S. launches fresh strikes on Iran, accuses Tehran of violating ceasefire. And Seychelles confers Guardian of the Blue Horizon title to Prime Minister Modi, its highest honor for environmental leadership. Award recognizes Prime Minister Modi's sustained focus on sustainable development and global vision for green growth. A massive political and religious storm has hit Ayodhya. The Ram Trust has confirmed that Champat Rai and Anil Mishra submitted their resignations while the role of Tinnu Yadav is still under scanner. NDTV has learned from top sources that cash has been recovered from key accused. While the trust deliberates on these exits, they also assured all the devotees that the donated ornaments are safe and accounted for. Meanwhile, investigation points directly to voucher handler Anukalp Mishra as the mastermind. Investigation further revealed he manipulated donation records, routed funds and blocked CCTV cameras during the counting process. As the probe intensifies, family of the accused Manish Yadav has claimed that he is being framed and made a scapegoat.
16: The Ram Temple donation theft case is being opened with layer by layer, and amidst these layers, there's a new layer that has walked into the entire special investigation team's periphery, which clearly means that the framework of the vehicles that were allowed into the Ram Temple under special permissions is now in the purview of this special investigation. Keeping in mind that there were certain vehicles that were not mentioned in the log sheet or were mentioned with a specific instruction of not being checked at regular intervals. Why were such instructions given? What was in mind? Who was the person behind it? And why was this considered as an SOP for certain vehicles? Was it being used for ferrying something inside or outside the Ram Temple is yet to be ascertained. What was being carried is yet to be ascertained. However, amidst all this, there's one thing is for sure, that the SIT has much more to investigate, not just inside the temple, but also related to the SOPs that were flouted regularly on ground zero in the temple. With camera person Mukesh Kumar, this is Manogya Loiwal in Ayodhya for NDTV.
17: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया.
18: कहाँ पे?
17: फैजाबाद में.
18: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
17: हाँ, किसी स्कूल में
18: जी.
17: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो. बस इतने जानता हूँ.
18: राम मंदिर में काम भी करते थे वो?
17: इसका हमें कुछ नहीं मालूम था.
18: तो उनका नाम बाबा कैसे आया फिर?
17: कुछ बता नहीं सकते.
18: कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार अनुकल्प से आपकी?
17: हमारी बात हुई थी आखिरी 30 तारीख.
18: 30 तारीख को
17: जब हमारा यहाँ भंडारा था.
18: अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ कथा यही हुआ था.
17: कथा यहीं हुई.
18: काफी लोग भी आए थे. आपने ही भागवत सुना था?
17: हमने. मैं अभी
18: जी जी जी जी.
19: आप भाई हैं
18: जी?
19: आपका क्या नाम
20: बताइए?
19: नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ. मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
20: वो सब फंसाया गया और क्या है.
19: हाँ,
20: फंसाया गया और क्या है.
19: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
20: मनीष को अभी 1 महीना काम करे हुआ है
19: बस.
20: बस
19: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
20: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं. बताइए.
19: अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है?
20: नहीं.
19: भाई के बेटे.
20: अच्छा अच्छा,
19: तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए. और क्या वहाँ काम क्या था?
20: काम काउंटिंग का ही था. 1 ही महीना हुआ था. बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ देखे, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं.
19: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
20: अरे वहाँ पर बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे.
19: बैंक की तरफ से
20: जी.
19: टिन्नू की भूमिका नहीं थी?
20: नहीं, उसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी.
19: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
20: मनीष की उम्र अभी 20 साल.
19: 20 बस?
20: बस.
19: अच्छा, तो इसमें सिर्फ 1 महीना हुआ? क्योंकि
20: सिर्फ 1 महीना हुआ, सिर्फ 1 महीना. यही केवल जो है मई में काम किया बस.
19: मई में
20: बस?
19: अच्छा, उसके पहले वो?
20: उसके पहले कुछ नहीं करता था.
19: पढ़ाई?
20: पढ़ाई करते थे.
19: कहाँ
20: भी उसकी पढ़ाई चल रही है. साकेत से.
19: साकेत से क्या कर रहा है?
20: बीए.
19: बीए. ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं.
20: ऐसा कुछ नहीं है.
19: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
20: ये सब फंसाया गया और क्या भैया.
6: And the Ram Mandir donation theft row has now snowballed into a full-blown political slugfest. After Akhilesh Yadav questioned the motto of the BJP, he has stated that donation first is the motto of the Saffron Party and not nation first. He further took a dig and said that neither religion nor shame in BJP. Yogi Adityanath accused the Samajwadi Party of firing on Ram devotees during its tenure, said the party's politics revolves around appeasement, asked Akhilesh Yadav to seek atonement by visiting Ram Lalla, and asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court monitored probe. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumours.
21: आप में हिम्मत नहीं,
1: क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
21: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़, इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
22: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो वो आप लोग के कहा हो गया, बताइए हो पाएंगे। श्री राम की को जगा दिया, जो हमारे खुशी है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं, हम सबकी कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्रीराम जी का इन लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
23: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
6: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस टुक बोथ द अक्यूज सिया गोयल एंड चेतन चौधरी टू लोहागढ़ फोर्ट टू रिक्रिएट द क्राइम सीन। The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan to delay Sia's marriage. Police have also seized Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
24: Been recreated. The accused has taken us to the places, like how it all happened, whose role was what in this whole incident. That's all.
0: वह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है. सिया ने बताया क्या क्या हुआ था उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया.
2: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
0: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था उसको हमने किया.
3: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी. मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं. तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है.
4: मुझे जस्टिस चाहिए फॉर केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं. सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए. थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया. सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैनल किया उन लोगों ने. थैंक्स यू.
6: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side. Stay tuned.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
25: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
5: अरे मेरे राजा.
26: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: the news.
1: Ayush.
0: Since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
1: Wow.
0: 4K. The works.
2: Where's the hook?
0: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
2: Where's the hook?
0: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
2: Bro, where's the hook?
0: Cross-platform, digital first, virality.
2: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You've got to be original in a world where everything seems generated.
0: That's it. That's what we're looking for.
2: The best campaigns.
0: The hottest trends.
2: The smartest brand moves on our new show.
0: But wait, what do we call it?
2: The Hook.
3: He has tracked the pulse of power from Washington.
4: Welcome, you're watching NETV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. SIT intensifies probe in Ram Mandir theft case. SIT to probe vehicle entry logs, lens on vehicles exempted from checks. Sources say attempts were made to dispose of the stolen funds. UP CM Yogi versus Akhilesh in fierce war of words over Ram Mandir theft. Yogi reminds Akhilesh of bullets fired on Ram devotees. Akhilesh calls the theft mockery of faith. And cops recreate crime scene at Lohagarh Fort. Shocking details emerge in Ketan murder case. Allegedly, Sia and Chetan googled ways to kill. The two killed Chetan to delay Sia's marriage, investigation claims. And nature's fury batters Sikkim. Bridge washed away, road connectivity hit, and villages isolated after bridge collapse. West Asia tensions flare again. U.S. launches fresh strikes on Iran, accuses Tehran of violating ceasefire. And Seychelles confers Guardian of the Blue Horizon title to Prime Minister Modi, its highest honor for environmental leadership. Award recognizes Prime Minister Modi's sustained focus on sustainable development and global vision for green growth. A massive political and religious storm has hit Ayodhya. The Ram Trust has confirmed that Champat Rai and Anil Mishra submitted their resignations while the role of Tinnu Yadav is still under scanner. NETV has learned from top sources that cash has been recovered from key accused. While the trust deliberates on these exits, they also assured all the devotees that the donated ornaments are safe and accounted for. Meanwhile, investigation points directly to voucher handler Anukalp Mishra as the mastermind. Investigation further revealed he manipulated donation records, routed funds and blocked CCTV cameras during the counting process. As the probe intensifies, family of the accused Manish Yadav has claimed that he is being framed and made a scapegoat.
5: The Ram Temple donation theft case is being opened with layer by layer, and amidst these layers, there's a new layer that has walked into this entire special investigation team's periphery, which clearly means that the framework of the vehicles that were allowed into the Ram Temple under special permissions is now in the purview of this special investigation. Keeping in mind that there were certain vehicles that were not mentioned in the log sheet or were mentioned with a specific instruction of not being checked at regular intervals. Why were such instructions given? What was in mind? Who was the person behind it? And why was this considered as an SOP for certain vehicles? Was it being used for ferrying something inside or outside the Ram Temple is yet to be ascertained. What was being carried is yet to be ascertained. However, amidst all this, there's one thing is for sure, that the SIT has much more to investigate, not just inside the temple, but also related to the SOPs that were flouted regularly on ground zero in the temple. With camera person Mukesh Kumar, this is Manogya Loiwal in Ayodhya for NDTV.
6: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया.
7: कहाँ पे?
6: फैजाबाद में.
7: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
6: किसी स्कूल में
7: जी.
6: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो. बस इतना ही जानता हूँ.
7: राम मंदिर में काम भी करते थे वो?
6: इसका हमें कुछ नहीं मालूम था.
7: उनका नाम बाबा कैसे आया फिर?
6: बता नहीं सकते।
1: कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार अनुकल्प से आपकी?
6: हमारी बात हुई थी आखिरी 30 तारीख।
1: 30 तारीख को
6: जब हमारा यहाँ भंडारा था।
1: अच्छा अच्छा, यहाँ कथा यही हुआ था?
6: कथा यहीं हुई,
1: काफी लोग भी आए थे। आपने ही भागवत सुना था?
6: हमने
1: जी जी जी जी।
8: आप भाई हैं? आपका क्या नाम
9: बताइए?
8: नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
9: वो सब फंसाया गया और क्या है।
8: हाँ,
9: फंसाया गया और क्या है।
8: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
9: मनीष को अभी 1 महीना काम करे हुआ है।
8: बस
9: बस,
8: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
9: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं। बताइए।
8: अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है?
10: भाई के बेटे।
8: अच्छा अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था?
9: काम काउंटिंग का ही था, 1 ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ देखे भी, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं।
8: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
9: अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे
8: बैंक की तरफ से।
9: जी,
8: टिनू की भूमिका नहीं थी?
9: नहीं, उसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी।
8: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
9: मनीष की उम्र अभी 20 साल।
8: 20 बस?
9: बस।
8: अच्छा, तो इसमें सिर्फ 1 महीना हुआ? क्योंकि
9: सिर्फ 1 महीना हुआ, सिर्फ 1 महीना, यही केवल जो है मई में काम किया बस।
8: मई में
9: बस?
8: अच्छा, उसके पहले वो?
9: उसके पहले कुछ नहीं करता था।
8: पढ़ाई?
9: पढ़ाई करते थे।
8: कहाँ
9: भी उसकी पढ़ाई चल रही है, साकेत से।
8: साकेत से क्या कर रहा है?
9: बीए।
8: बीए? ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं।
9: ऐसा कुछ नहीं है।
8: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
9: ये सब फंसाया गया और क्या भैया।
4: And the Ram Mandir donation theft row has now snowballed into a full-blown political slugfest. After Akhilesh Yadav questioned the motto of the BJP, he has stated that donation first is the motto of the Saffron Party and not nation first. He further took a dig and said that neither religion nor shame in BJP. Yogi Adityanath accused the Samajwadi Party of firing on Ram devotees during its tenure, said the party's politics revolves around appeasement, ask Akhilesh Yadav to seek atonement by visiting Ram Lalla, and asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court monitored probe. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumors.
11: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
12: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है, कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं?
10: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो मैं आप लोग के राम हो गया, बताइए हो पाएंगे? जो श्री राम की को जगा दिया, जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं, हम सब की कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्रीराम जी का लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
13: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
4: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस टुक बोथ द अक्यूज सिया गोयल एंड चेतन चौधरी टू लोहागढ़ फोर्ट टू रिक्रिएट द क्राइम सीन। The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan to delay Sia's marriage. Police have also seized Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
14: It's been recreated. The accused has taken us to the places, like how it all happened, whose role was what in this whole incident, that's all.
15: वह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहां पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।
16: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
15: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया।
17: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
18: मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैनल किया उन लोगों ने, थैंक्स यू।
4: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side. Stay tuned.
19: Landed in the beautiful state of Andhra Pradesh, which has no shortage of its own superstars, and that's why it's our pleasure to be joined today on NDTV by Pawan Kalyan, the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Good to have you, sir.
20: You were recently denied permission, sir, on Telangana Formation Day.
21: I think somehow they're scared, otherwise there is no need for them to deny permission.
20: Is the India bloc, you know, up on its last legs?
21: I had seen in my family, they were very strong supporters of Congress. As long Indira Gandhiji was, even to an extent Rajiv Gandhiji was there, they could slowly, but the disconnect started because of their policies. I really expected some kind of a greater understanding when this man, Mr. Rahul Gandhi, if I go and meet people, that gives me a very entire greater understanding, greater depth. But I felt after walking from Kanyakumari to Kashmir, and the way he understood, he made, then I said he has become more shallow.
19: You know, it was genuinely a first day, first show kind of perfect political storm for Vijay. What went through your mind when you saw it unfold?
21: I came into politics in 2007. And from then...
19: Two decades.
21: Yeah,
19: amazing.
21: And it was a tough journey for me. And sometimes I felt like giving up. Sometimes I feel like, why the hell I was in politics. I wish I could have such kind of smooth journey like Mr. Vijay. In that way, I said, okay, I was envious.
19: You have a good relationship with the BJP and especially with Prime Minister Modi.
21: This man is the future of our country and we need it.
0: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
2: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
22: Really?
2: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
23: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig. Until what's buried stands up to be counted. Breaking Ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
3: From the newsroom, to the studio, to the thick of political...
4: Welcome back. The conflict between United States and Iran has escalated once again. U.S. Central Command says that the American fighter jets struck 10 Iranian military targets near the Strait of Hormuz. This after U.S. accused Tehran of violating the ceasefire and launching a drone attack on its tanker. President Donald Trump has warned that Iran will never learn and said Washington could be forced to escalate military action if attacks continue. Iran claims it has retaliated by launching ballistic missiles and drones at 8 U.S. military sites in the Gulf, including bases in Kuwait and Bahrain. Slamming U.S. airstrike, Iranian Foreign Ministry has said that brutal attacks are a clear violation of the U.N. Charter and recently signed Memorandum of Understanding between the two countries. Let's take a look at this report.

0: The last exercise came in 2024, where the Indian Navy deployed the multi-role stealth frigate INS Shivalik. The RIMPAC exercise builds on the success of previous exercises that has united allies to showcase the capability of maritime forces. India's involvement highlights the strengthening multilateral ties and stands testimony to the Indian Navy's capability to operate in any part of the world. Bureau Report, NDTV World.
1: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना
2: बाल्टी
1: और मॉनसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना पसीना मत बहाओ बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील बर्जर रूफ कूलेंट सील

0: showcase the capability of maritime forces. India's involvement highlights the strengthening multilateral ties and stands testimony to the Indian Navy's capability to operate in any part of the world. Bureau Report, NDTV World.
1: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना
2: बाल्टी
1: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना पसीना मत बहाओ बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील बर्जर रूफ कूलेंट सील

0: We've landed in the beautiful state of Andhra Pradesh, which has no shortage of its own superstars. And that's why it's our pleasure to be joined today on NDTV by Pavan Kalyan, the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Good to have you, sir. You were recently denied permission, sir, on Telangana Formation Day.
1: I think somehow they're scared. Otherwise, there is no need for them to deny permission.
0: Is the India bloc, you know, up on its last leg?
2: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. SIT intensifies probe in Ram Mandir theft case. SIT to probe vehicle entry logs, lens on vehicles exempted from checks. Sources say attempts were made to dispose of the stolen funds. UP CM Yogi versus Akhilesh in fierce war of words over Ram Mandir theft. Yogi reminds Akhilesh of bullets fired on Ram devotees. Akhilesh calls the theft mockery of faith. And cops recreate crime scene at Lohagarh Fort. Shocking details emerge in Ketan murder case. Allegedly, Sia and Chetan googled ways to kill. The two killed Chetan to delay Sia's marriage, investigation claims. And nature's fury batters Sikkim. Bridge washed away, road connectivity hit and villages isolated after bridge collapse. West Asia tensions flare again. US launches fresh strikes on Iran, accuses Tehran of violating ceasefire. And Seychelles confers Guardian of the Blue Horizon title to Prime Minister Modi, its highest honour for environmental leadership. Award recognises Prime Minister Modi's sustained focus on sustainable development and global vision for green growth. A massive political and religious storm has hit Ayodhya. The Ram Trust has confirmed that Champat Rai and Anil Mishra submitted their resignations while the role of Tinnu Yadav is still under scanner. NDTV has learned from top sources that cash has been recovered from key accused. While the trust deliberates on these exits, they also assured all the devotees that the donated ornaments are safe and accounted for. Meanwhile, investigation points directly to voucher handler Anukalp Mishra as the mastermind. Investigation further revealed he manipulated donation records, routed funds and blocked CCTV cameras during the counting process. As the probe intensifies, family of the accused Manish Yadav has claimed that he is being framed and made a scapegoat.
3: The Ram Temple donation theft case is being opened with layer by layer, and amidst these layers, there's a new layer that has walked into this entire special investigation team's periphery, which clearly means that the framework of the vehicles that were allowed into the Ram Temple under special permissions is now in the purview of this special investigation. Keeping in mind that there were certain vehicles that were not mentioned in the log sheet or were mentioned with a specific instruction of not being checked at regular intervals. Why were such instructions given? What was in mind? Who was the person behind it? And why was this considered as an SOP for certain vehicles? Was it being used for ferrying something inside or outside the Ram Temple is yet to be ascertained. What was being carried is yet to be ascertained. However, amidst all this, there's one thing is for sure, that the SIT has much more to investigate, not just inside the temple, but also related to the SOPs that were flouted regularly on ground zero in the temple. With camera person Mukesh Kumar, this is Manogya Loiwal in Ayodhya for NDTV.
4: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया.
0: कहाँ पे?
4: फैजाबाद में.
0: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
4: किसी स्कूल में
0: जी.
4: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई कर रहा है वो. बस इतना जानता हूँ.
0: राम मंदिर में काम भी करते थे वो?
4: इसका हमें कुछ नहीं मालूम था.
0: तो उनका नाम बाबा कैसे आया फिर?
4: कुछ बता नहीं सकते.
0: कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार अनुकल्प से आपकी?
4: हमारी बात हुई थी आखिरी 30 तारीख.
0: 30 तारीख को
4: जब हमारा यहाँ भंडारा था.
0: अच्छा अच्छा, यहाँ कथा यही हुआ था?
4: हाँ, कथा यही हुई.
0: काफी लोग भी आए थे? आपने ही भागवत सुना था?
4: हमने. मैं अभी
0: जी जी जी जी.
5: आप भाई हैं? आपका क्या नाम
6: बताइए?
5: नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
6: वो सब फंसाया गया और क्या है, फंसाया गया और क्या है।
7: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
6: मनीष को अभी एक महीना काम करे हुआ है
7: बस।
6: बस
7: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
6: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं, बताइए।
7: अच्छा पड़ोस मतलब रिश्तेदार नहीं है?
8: नहीं। भाई के बेटे।
7: अच्छा अच्छा, तो मतलब एक ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था?
6: काम काउंटिंग का ही था, एक ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं।
7: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
6: अरे वहाँ पर बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे
7: बैंक की तरफ से।
6: जी
7: टिन्नू की भूमिका नहीं थी?
6: नहीं, इसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी।
7: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
6: मनीष की उम्र अभी 20 साल।
7: 20 बस?
6: बस।
7: अच्छा, तो इसमें सिर्फ एक महीना हुआ? क्योंकि
6: सिर्फ एक महीना हुआ, सिर्फ एक महीना, यही केवल जो है मई में काम किया बस।
7: मई में
6: बस?
7: अच्छा, उसके पहले वो?
6: उसके पहले कुछ नहीं करता था।
7: पढ़ाई?
6: पढ़ाई करते थे।
7: कहाँ
6: भी उसकी पढ़ाई चल रही है, साकेत से।
7: साकेत से क्या कर रहा है?
6: बीए।
7: तो ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं।
6: ऐसा कुछ नहीं है।
7: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है, मतलब
6: ये सब फंसाया गया और क्या भैया?
2: And the Ram Mandir donation theft row has now snowballed into a full-blown political slugfest. After Akhilesh Yadav questioned the motto of the BJP, he has stated that donation first is the motto of the Saffron Party and not nation first. He further took a dig and said that neither religion nor shame in BJP. Yogi Adityanath accused the Samajwadi Party of firing on Ram devotees during its tenure, said the party's politics revolves around appeasement. Ask Akhilesh Yadav to seek atonement by visiting Ram Lalla, and asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court-monitored probe. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumors.
9: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
10: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
11: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो वो आप लोग के काम हो गया, बताइए हो पाएंगे? जो श्री राम की को जगा दिया, जो हमारे तुलसी है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं है हम सबकी, कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्रीराम जी का इन लोगों ने सहारा दिया, उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
8: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
2: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस टुक बोथ द अक्यूज सिया गोयल एंड चेतन चौधरी टू लोहागढ़ फोर्ट टू रिक्रिएट द क्राइम सीन। The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan to delay Sia's marriage. Police have also seized Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
12: Been recreated. The accused has taken us to the places like how it all happened, whose role was what in this whole incident. That's all.
13: सुबह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहां पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।
14: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
13: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया।
15: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
16: मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैनल किया उन लोगों ने, थैंक्स यू।
2: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side. Stay tuned.

0: कमर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी
0: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्जर रूफ कूलेंट सील।

0: Chetan murder case. Allegedly, Sia and Chetan googled ways to kill. The two killed Chetan to delay Sia's marriage, investigation claims. And nature's fury batters Sikkim. Bridge washed away, road connectivity hit, and villages isolated after bridge collapse. West Asia tensions flare again. U.S. launches fresh strikes on Iran, accuses Tehran of violating ceasefire. And Seychelles confers Guardian of the Blue Horizon title to Prime Minister Modi, its highest honor for environmental leadership. Award recognizes Prime Minister Modi's sustained focus on sustainable development and global vision for green growth. A massive political and religious storm has hit Ayodhya. The Ram Trust has confirmed that Champat Rai and Anil Mishra submitted their resignations while the role of Tinnu Yadav is still under scanner. NDTV has learned from top sources that cash has been recovered from key accused. While the trust deliberates on these exits, they also assured all the devotees that the donated ornaments are safe and accounted for. Meanwhile, investigation points directly to voucher handler Anukalp Mishra as the mastermind. Investigation further revealed he manipulated donation records, routed funds and blocked CCTV cameras during the counting process. As the probe intensifies, family of the accused Manish Yadav has claimed that he is being framed and made a scapegoat.
1: The Ram Temple donation theft case is being opened with layer by layer, and amidst these layers, there's a new layer that has walked into this entire special investigation team's periphery, which clearly means that the framework of the vehicles that were allowed into the Ram Temple under special permissions is now in the purview of this special investigation. Keeping in mind that there were certain vehicles that were not mentioned in the log sheet or were mentioned with a specific instruction of not being checked at regular intervals. Why were such instructions given? What was in mind? Who was the person behind it? And why was this considered as an SOP for certain vehicles? Was it being used for ferrying something inside or outside the Ram Temple is yet to be ascertained. What was being carried is yet to be ascertained. However, amidst all this, there's one thing is for sure, that the SIT has much more to investigate, not just inside the temple, but also related to the SOPs that were flouted regularly on ground zero in the temple. With camera person Mukesh Kumar, this is Manogya Loiwal in Ayodhya for NDTV.
2: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया.
3: कहाँ पे?
2: फैजाबाद में.
3: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
2: हाँ, किसी स्कूल में
3: जी.
2: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो. बस इतने जानता हूँ.
3: राम मंदिर में काम भी करते थे वो?
2: इसका हमें कुछ नहीं मालूम था.
3: उनका नाम बाबा कैसे आया फिर?
2: कुछ बता नहीं सकते.
3: कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार अनुकल्प से आपकी?
2: हमारी बात हुई थी आखिरी 30 तारीख.
3: 30 तारीख को
2: जब हमारा यहाँ भंडारा था.
3: अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ कथा यही हुआ था.
2: कथा यहाँ हुई.
3: काफी लोग भी आए थे. आपने ही भागवत सुना था?
2: हमने. मैं अभी
3: जी जी जी
4: जी आप भाई
3: हैं?
4: आपका क्या नाम
5: बताइए.
4: नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
5: वो सब फंसाया गया और कह रहा
4: है. हाँ,
5: फंसाया गया और कह रहा
4: है. मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
5: मनीष को अभी 1 महीना काम करे हुआ है
4: बस.
5: बस
4: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
5: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं. बताइए.
4: अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है?
6: भाई के बेटे.
4: अच्छा अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए. और क्या वहाँ काम क्या था?
5: काम काउंटिंग का ही था. 1 ही महीना हुआ था. बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं.
4: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
5: अरे वहाँ पर बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे
4: बैंक की तरफ से
5: जी.
4: टिन्नू की भूमिका नहीं थी?
5: नहीं, उसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी.
4: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
5: मनीष की उम्र अभी 20 साल.
4: 20 बस?
5: बस.
4: अच्छा, तो इसमें सिर्फ 1 महीना हुआ? क्योंकि
5: सिर्फ 1 महीना हुआ, सिर्फ 1 महीना. यही केवल जो है मई में काम किया बस.
4: मई में
5: बस?
4: अच्छा, उसके पहले वो?
5: उसके पहले कुछ नहीं करता था.
4: पढ़ाई?
5: पढ़ाई करते थे.
4: कहाँ
5: भी उसकी पढ़ाई चल रही है. साकेत से.
4: साकेत से क्या कर रहा है?
5: बीए.
4: बीए. ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं.
5: ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं हुआ।
4: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है आप लोग को क्या लग रहा है, मतलब
5: ये सब फंसाया गया और क्या भैया?
0: And the Ram Mandir donation theft row has now snowballed into a full-blown political slugfest. After Akhilesh Yadav questioned the motto of the BJP, he has stated that donation first is the motto of the Saffron Party and not nation first. He further took a dig and said that neither religion nor shame in BJP. Yogi Adityanath accused the Samajwadi Party of firing on Ram devotees during its tenure, said the party's politics revolves around appeasement, asked Akhilesh Yadav to seek atonement by visiting Ram Lalla, and asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court monitored probe. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumors.
6: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
7: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
8: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो आप लोगों के राम हो गया, बताइए हो पाएंगे? जो श्री राम की को जगा दिया, जो हमारे खुशी है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं, हम सबकी कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्रीराम जी का लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
9: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी।
0: The Ketan Agarwal murder investigation is taking a dramatic turn. Pune

0: asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court monitored probe. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumors.
1: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
2: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़, इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
3: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो मैं आप लोगों के राम हो गया, बताइए हो पाएंगे। जो श्री राम की को जगा दिया, जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं, हम सब की कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्रीराम जी का लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं का धोखा देने का हमने काम किया है।
4: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
0: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस took both the accused Siya Goyal and Chetan Chaudhary to Lohagarh Fort to recreate the crime scene. The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan to delay Sia's marriage. Police have also seized Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
5: Been recreated. The accused has taken us to the places, like how it all happened, whose role was what in this whole incident. That's all.
6: वह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहां पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है. सिया ने बताया क्या क्या हुआ था उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया.
7: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था.
6: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था उसको हमने किया.
8: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी. मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं. तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है.
9: मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं. सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए. थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया. सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैनल किया उन लोगों ने. थैंक्स यू.
0: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side. Stay tuned.

0: Vision of the Blue Horizon title to Prime Minister Modi, its highest honor for environmental leadership. Award recognizes Prime Minister Modi's sustained focus on sustainable development and global vision for green growth. A massive political and religious storm has hit Ayodhya. The Ram Trust has confirmed that Champat Rai and Anil Mishra submitted their resignations while the role of Tinnu Yadav is still under scanner. NDTV has learned from top sources that cash has been recovered from key accused. While the trust deliberates on these exits, they also assured all the devotees that the donated ornaments are safe and accounted for. Meanwhile, investigation points directly to voucher handler Anukalp Mishra as the mastermind. Investigation further revealed he manipulated donation records, routed funds and blocked CCTV cameras during the counting process. As the probe intensifies, family of the accused Manish Yadav has claimed that he is being framed and made a scapegoat.
1: The Ram Temple donation theft case is being opened with layer by layer, and amidst these layers, there's a new layer that has walked into this entire special investigation team's periphery, which clearly means that the framework of the vehicles that were allowed into the Ram Temple under special permissions is now in the purview of this special investigation. Keeping in mind that there were certain vehicles that were not mentioned in the log sheet or were mentioned with a specific instruction of not being checked at regular intervals. Why were such instructions given? What was in mind? Who was the person behind it? And why was this considered as an SOP for certain vehicles? Was it being used for ferrying something inside or outside the Ram Temple is yet to be ascertained. What was being carried is yet to be ascertained. However, amidst all this, there's one thing is for sure, that the SIT has much more to investigate, not just inside the temple, but also related to the SOPs that were flouted regularly on ground zero in the temple. With camera person Mukesh Kumar, this is Manogya Loiwal in Ayodhya for NDTV.
2: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया.
3: कहाँ पे?
2: फैजाबाद में.
3: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
2: किसी स्कूल में
3: जी.
2: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो. बस इतना ही जानता हूँ.
3: राम मंदिर में काम भी करते थे वो?
2: इसका हमें कुछ नहीं मालूम था.
3: तो उनका नाम बाबा कैसे आया फिर?
2: कुछ बता नहीं सकते.
3: कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार अनुकल्प से आपकी?
2: हमारी बात हुई थी आखिरी 30 तारीख.
3: 30 तारीख को
2: जब हमारा यहाँ भंडारा था.
3: अच्छा अच्छा, यहाँ कथा यही हुआ था?
2: कथा यही हुई.
3: काफी लोग भी आए थे? आपने ही भागवत सुना था?
2: हमने. मैं अभी
3: जी जी जी जी.
4: आप भाई हैं?
3: जी.
4: आपका क्या नाम
5: बताइए?
4: नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ. मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
5: वो सब फंसाया गया और क्या है.
4: हाँ,
5: फंसाया गया और क्या है.
4: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
5: मनीष को अभी 1 महीना काम करे हुआ है.
4: बस
5: बस.
4: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
5: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं. बताइए.
4: अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है?
6: भाई के बेटे.
4: अच्छा अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए. और क्या वहाँ काम क्या था?
5: काम काउंटिंग का ही था. 1 ही महीना हुआ था. बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के भी, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं.
4: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
5: अरे वहाँ पर बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे.
4: बैंक की तरफ से?
5: जी.
4: टिन्नू की भूमिका नहीं थी?
5: नहीं, इसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी.
4: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
5: मनीष की उम्र अभी 20 साल.
4: 20 बस?
5: बस.
4: अच्छा, तो इसमें सिर्फ 1 महीना हुआ? क्योंकि
5: सिर्फ 1 महीना हुआ, सिर्फ 1 महीना. यही केवल जो है मई में काम किया बस.
4: मई में
5: बस?
4: अच्छा, उसके पहले वो?
5: उसके पहले कुछ नहीं करता था.
4: पढ़ाई?
5: पढ़ाई करते थे.
4: कहाँ
5: भी उसकी पढ़ाई चल रही है. साकेत से?
4: साकेत से. क्या कर रहा है?
5: बीए.
4: बीए. ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं.
5: ऐसा कुछ नहीं है.
4: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
5: ये सब फंसाया गया और क्या भैया.
0: And the Ram Mandir donation theft row has now snowballed into a full-blown political slugfest. After Akhilesh Yadav questioned the motto of the BJP, he has stated that donation first is the motto of the Saffron Party and not nation first. He further took a dig and said that neither religion nor shame in BJP. Yogi Adityanath accused the Samajwadi Party of firing on Ram devotees during its tenure, said the party's politics revolves around appeasement. Ask Akhilesh Yadav to seek atonement by visiting Ram Lala. and asserted that

0: Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court monitored probe. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumors.
1: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
2: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़, इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
3: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो वो आप लोगों के कहाँ हो गए, बताइए हो पाएंगे। जो श्री राम की को जगा दिया, जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं, हम सब की कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्रीराम जी का लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
4: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
0: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस टुक बोथ द अक्यूज सिया गोयल एंड चेतन चौधरी टू लोहागढ़ फोर्ट टू रिक्रिएट द क्राइम सीन। The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan to delay Sia's marriage. Police have also seized

0: Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
1: Been recreated. The accused has taken us to the places, like how it all happened, whose role was what in this whole incident. That's all.
2: वह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है. सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया.
3: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
2: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया.
4: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी. मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं. तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है.
5: मुझे जस्टिस चाहिए फॉर केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं. सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए. थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया. सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैनल किया उन लोगों ने. थैंक्स यू.
0: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side. Stay tuned.
6: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
7: So many attacks.
6: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
7: It's incredible.
6: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
7: Welcome to Left, Right and Center.
6: Hard facts.
7: War-struck country.
6: Hard questions.
7: In the Ukraine.
6: 30 years of trust.
8: In the Kargil area.
7: North Ukraine. In France. In Italy.
9: At Srinagar.
10: I am France.
7: Vishnu Shom for NDTV.
6: Vishnu Shom. Only on NDTV.
11: Literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
12: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
11: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
12: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash. In New Delhi.
11: What would the young man in India say if he could see you right now?
12: I'll be up there soon with you.

0: used. While the trust deliberates on these exits, they also assured all the devotees that the donated ornaments are safe and accounted for. Meanwhile, investigation points directly to voucher handler Anukalp Mishra as the mastermind. Investigation further revealed he manipulated donation records, routed funds and blocked CCTV cameras during the counting process. As the probe intensifies, family of the accused Manish Yadav has claimed that he is being framed and made a scapegoat.
1: The Ram Temple donation theft case is being opened with layer by layer, and amidst these layers, there's a new layer that has walked into this entire special investigation team's periphery, which clearly means that the framework of the vehicles that were allowed into the Ram Temple under special permissions is now in the purview of this special investigation. Keeping in mind that there were certain vehicles that were not mentioned in the log sheet or were mentioned with a specific instruction of not being checked at regular intervals. Why were such instructions given? What was in mind? Who was the person behind it? And why was this considered as an SOP for certain vehicles? Was it being used for ferrying something inside or outside the Ram Temple is yet to be ascertained. What was being carried is yet to be ascertained. However, amidst all this, there's one thing is for sure, that the SIT has much more to investigate, not just inside the temple, but also related to the SOPs that were flouted regularly on ground zero in the temple. With camera person Mukesh Kumar, this is Manogya Loiwal in Ayodhya for NDTV.
2: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया.
3: कहाँ पे?
2: फैजाबाद में.
3: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
2: किसी स्कूल में
3: जी.
2: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो. बस इतना ही जानता हूँ.
3: राम मंदिर में काम भी करते थे वो?
2: इसका हमें कुछ नहीं मालूम था.
3: तो उनका नाम बाबा कैसे आया फिर?
2: कुछ बता नहीं सकते.
3: कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार अनुकल्प से आपकी?
2: हमारी बात हुई थी आखिरी 30 तारीख.
3: 30 तारीख को
2: जब हमारा यहाँ भंडारा था.
3: अच्छा अच्छा, यहाँ कथा यही हुआ था?
2: कथा यही हुई.
3: काफी लोग भी आए थे? आपने ही भागवत सुना था?
2: हमने. मैं अभी
3: जी जी जी जी.
4: आप भाई हैं?
3: जी.
4: आपका क्या नाम
5: बताइए?
4: नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ. मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
5: वो सब फंसाया गया और कह रहा
4: है.
5: फंसाया गया और कह रहा है.
4: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
5: मनीष को अभी 1 महीना काम करे हुआ है.
4: बस
5: बस.
4: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
5: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं. बताइए.
4: अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है?
6: भाई के बेटे.
4: अच्छा अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए. और क्या वहाँ काम क्या था?
5: काम काउंटिंग का ही था. 1 ही महीना हुआ था. बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के भी, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं.
4: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
5: अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे.
4: बैंक की तरफ से?
5: जी.
4: टिनू की भूमिका नहीं थी?
5: नहीं, इसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी.
4: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
5: मनीष की उम्र अभी 20 साल.
4: 20 बस?
5: बस.
4: अच्छा, तो इसमें सिर्फ 1 महीना हुआ? क्योंकि
5: सिर्फ 1 महीना हुआ, सिर्फ 1 महीना. यही केवल जो है मई में काम किया बस.
4: मई में
5: बस?
4: अच्छा, उसके पहले वो?
5: उसके पहले कुछ नहीं करता था.
4: पढ़ाई?
5: पढ़ाई करते थे.
4: कहाँ
5: भी उसकी पढ़ाई चल रही है. साकेत से.
4: साकेत से? क्या कर रहा है?
5: बीए.
4: बीए. ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं.
5: ऐसा कुछ नहीं है.
4: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
5: ये सब फंसाया गया और क्या भैया.
0: And the Ram Mandir donation theft row has now snowballed into a full-blown political slugfest. After Akhilesh Yadav questioned the motto of the BJP, he has stated that donation first is the motto of the Saffron Party and not nation first. He further took a dig and said that neither religion nor shame in BJP. Yogi Adityanath accused the Samajwadi Party of firing on Ram devotees during its tenure, said the party's politics revolves around appeasement, asked Akhilesh Yadav to seek atonement by visiting Ram Lala, and asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court monitored probe. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumors.
7: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के

0: निकले हो, ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
1: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़, इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
2: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो वो आप लोगों के कहां हो गया, बताइए हो पाएंगे। श्री राम की को जगा लिया, जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं, हम सबकी कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्री राम जी का इन लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
3: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
4: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस टुक बोथ द अक्यूज सिया गोयल एंड चेतन चौधरी टू लोहागढ़ फोर्ट टू रिक्रिएट द क्राइम सीन। The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan to delay Sia's marriage. Police have also seized Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
5: Been recreated. The accused has taken us to the places, like how it all happened, whose role was what in this whole incident, that's all.
6: सुबह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है, सीआर ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।
7: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सीआर थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
6: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया।
8: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
9: मुझे जस्टिस चाहिए फॉर केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए, और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैनल किया उन लोगों ने, थैंक्स।
4: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side. Stay tuned.
10: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
11: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal.
10: The show that sets the prime time agenda.
11: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
10: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
12: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
13: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
14: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
15: High rate, check the audio.
13: Let's do it, let's start.
16: Breaking story, we're jumping straight into it.
13: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
17: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
18: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
19: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
20: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
21: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
12: Front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
22: So many attacks.
12: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
22: It's incredible.
12: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
22: Welcome to Left, Right and Center.
12: Hard facts.
4: Welcome back. The conflict between United States and Iran has escalated once again. U.S. Central Command says that the American fighter jets struck 10 Iranian military targets near the Strait of Hormuz. This after U.S. accused Tehran of violating the ceasefire and launching a drone attack on its tanker. President Donald Trump has warned that Iran will never learn and said Washington could be forced to escalate military action if attacks continue. Iran claims it has retaliated by launching ballistic missiles and drones at 8 U.S. military sites in the Gulf, including bases in Kuwait and Bahrain. Slamming U.S. airstrike, Iranian Foreign Ministry has said that brutal attacks are a clear violation of the U.N. Charter and recently signed Memorandum of Understanding between the two countries. Let's take a look at this report.

0: अपनी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
1: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
2: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो आप लोग के राम हो गया, बताइए हो पाएंगे? जो श्री राम की को जगह दिया, जो हमारे खुशी है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं है, हम सबकी कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्रीराम जी का इन लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
3: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
4: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस टुक बोथ द अक्यूज सिया गोयल एंड चेतन चौधरी टू लोहागढ़ फोर्ट टू रिक्रिएट द क्राइम सीन। The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan to delay Sia's marriage. Police have also seized Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
5: Been recreated. The accused has taken us to the places, like how it all happened, whose role was what in this whole incident, that's all.
6: सुबह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहां पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।
7: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ

0: हुई है, उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
1: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया।
2: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
3: मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए, और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैनल किया उन लोगों ने, थैंक्स यू।
4: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side. Stay tuned.

0: Russian theft case is being opened with layer by layer, and amidst these layers, there's a new layer that has walked into this entire special investigation team's periphery, which clearly means that the framework of the vehicles that were allowed into the Ram temple under special permissions is now in the purview of this special investigation. Keeping in mind that there were certain vehicles that were not mentioned in the log sheet or were mentioned with a specific instruction of not being checked at regular intervals. Why were such instructions given? What was in mind? Who was the person behind it? And why was this considered as an SOP for certain vehicles? Was it being used for ferrying something inside or outside the Ram temple is yet to be ascertained. What was being carried is yet to be ascertained. However, amidst all this, there's one thing is for sure, that the SIT has much more to investigate, not just inside the temple, but also related to the SOPs that were flouted regularly on ground zero in the temple. With camera person Mukesh Kumar, this is Manogya Loiwal in Ayodhya for NDTV.
1: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया।
2: कहाँ पे?
1: फैजाबाद में।
2: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
1: हाँ, किसी स्कूल में
2: जी।
1: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो, बस इतना जानता हूँ।
2: राम मंदिर में काम भी करते थे वो?
1: इसका हमें कुछ नहीं मालूम था।
2: तो उनका नाम बाबा कैसे आया?
1: कुछ बता नहीं सकते।
2: कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार अनकल से आपकी?
1: हमारी बात हुई थी आखिरी 30 तारीख
2: को,
1: जब हमारा यहाँ भंडारा था।
2: अच्छा अच्छा, यहाँ कथा यही हुआ था?
1: हाँ, कथा यही हुई।
2: काफी लोग भी आए थे? आपने ही भागवत सुना था?
1: हमने, मैं अभी
2: जी जी जी
3: जी। आप भाई
2: हैं?
3: आपका क्या नाम
4: बताइए?
3: नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
4: वो सब फंसाया गया और कह रहा
3: है।
4: फंसाया गया और कह रहा है।
3: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
4: मनीष को अभी 1 महीना काम करे हुआ है।
3: बस
4: बस,
3: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
4: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं, बताइए।
3: अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है?
5: भाई के बेटे।
3: अच्छा अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए? और क्या वहाँ काम क्या था?
4: काम काउंटिंग का ही था, 1 ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं।
3: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
4: अरे वहाँ पर बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे।
3: बैंक की तरफ से?
4: जी।
3: टिनू की भूमिका नहीं थी?
4: नहीं, इसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी।
3: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
4: मनीष की उम्र अभी 20 साल।
3: 20 बस?
4: बस।
3: अच्छा, तो इसमें सिर्फ 1 महीना हुआ? क्योंकि
4: सिर्फ 1 महीना हुआ, सिर्फ 1 महीना, यही केवल जो है मई में काम किया बस।
3: मई में
4: बस?
3: अच्छा, उसके पहले वो?
4: उसके पहले कुछ नहीं करता था।
3: पढ़ाई?
4: पढ़ाई करते थे।
3: कहाँ?
4: अभी भी उसकी पढ़ाई चल रही है साकेत से।
3: साकेत से? क्या कर रहा है?
4: बीए।
3: बीए? ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं।
4: ऐसा कुछ नहीं है।
3: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
4: ये सब फंसाया गया और क्या भैया।
6: And the Ram Mandir donation theft trial has now snowballed into a full-blown political slugfest. After Akhilesh Yadav questioned the motto of the BJP, he has stated that donation first is the motto of the Saffron Party and not nation first. He further took a dig and said that neither religion nor shame in BJP. Yogi Adityanath accused the Samajwadi Party of firing on Ram devotees during its tenure, said the party's politics revolves around appeasement, asked Akhilesh Yadav to seek atonement by visiting Ram Lalla, and asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court monitored probe. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumors.
7: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि

0: उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें।
1: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़, इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
2: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो आप लोग के राम हो गया, बताइए हो पाएंगे। जो श्री राम की को जगह दिया, जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं है, हम सबकी कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्री राम जी का इन लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
3: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
4: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस टुक बोथ द अक्यूज सिया गोयल एंड चेतन चौधरी टू लोहागढ़ फोर्ट टू रिक्रिएट द क्राइम सीन। The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan to delay Sia's marriage. Police have also seized Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
5: Been recreated. The accused has taken us to the places like how it all happened, whose role was what in this whole incident. That's all.
6: सुबह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहां पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।
7: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
6: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया।
8: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले।

0: by visiting Ram Lalla and asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court monitored probe. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumors.
1: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
2: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़, इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
3: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो वो आप लोग के कहाँ हो गया, बताइए हो पाएंगे। जो श्री राम की को जगह दिया, जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं है, हम सबकी कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्रीराम जी का इन लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
4: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
0: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस टुक बोथ द अक्यूज सिया गोयल एंड चेतन चौधरी टू लोहागढ़ फोर्ट टू रिक्रिएट द क्राइम सीन। The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan.

0: the news.
1: Ayush.
0: Since when do we do scripts?
1: Fair point.
0: Picture this. The biggest stage. Floodlights.
1: Wow.
0: 4K. The works.
2: And welcome, you're watching NETV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. SIT intensifies probe in Ram Mandir theft case. SIT to probe vehicle entry logs, lens on vehicles exempted from checks. Sources say attempts were made to dispose of the stolen funds. UP CM Yogi versus Akhilesh in fierce war of words over Ram Mandir theft. Yogi reminds Akhilesh of bullets fired on Ram devotees. Akhilesh calls the theft mockery of faith. And cops recreate crime scene at Lohagarh Fort. Shocking details emerge in Ketan murder case. Allegedly, Sia and Chetan googled ways to kill. The two killed Chetan to delay Sia's marriage. Investigation claims. And nature's fury batters Sikkim. Bridge washed away, road connectivity hit, and villages isolated after bridge collapse. West Asia tensions flare again. U.S. launches fresh strikes on Iran, accuses Tehran of violating ceasefire. And Seychelles confers Guardian of the Blue Horizon title to Prime Minister Modi, its highest honor for environmental leadership. Award recognizes Prime Minister Modi's sustained focus on sustainable development and global vision for green growth. A massive political and religious storm has hit Ayodhya. The Ram Trust has confirmed that Champat Rai and Anil Mishra submitted their resignations while the role of Tinnu Yadav is still under scanner. NETV has learned from top sources that cash has been recovered from key accused. While the trust deliberates on these exits, they also assured all the devotees that the donated ornaments are safe and accounted for. Meanwhile, investigation points directly to voucher handler Anukalp Mishra as the mastermind. Investigation further revealed he manipulated donation records, routed funds and blocked CCTV cameras during the counting process. As the probe intensifies, family of the accused Manish Yadav has claimed that he is being framed and made a scapegoat.
3: The Ram Temple donation theft case is being opened with layer by layer, and amidst these layers, there's a new layer that has walked into this entire special investigation team's periphery, which clearly means that the framework of the vehicles that were allowed into the Ram Temple under special permissions is now in the purview of this special investigation. Keeping in mind that there were certain vehicles that were not mentioned in the log sheet or were mentioned with a specific instruction of not being checked at regular intervals. Why were such instructions given? What was in mind? Who was the person behind it? And why was this considered as an SOP for certain vehicles? Was it being used for ferrying something inside or outside the Ram Temple is yet to be ascertained. What was being carried is yet to be ascertained. However, amidst all this, there's one thing is for sure, that the SIT has much more to investigate, not just inside the temple, but also related to the SOPs that were flouted regularly on ground zero in the temple. With camera person Mukesh Kumar, this is Manogya Loiwal in Ayodhya for NDTV.
4: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया.
5: कहाँ पे?
4: फैजाबाद में.
5: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
4: किसी स्कूल में
5: जी.
4: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो. बस इतना ही जानता हूँ.
5: राम मंदिर में काम भी करते थे वो?
4: इसका हमें कुछ नहीं मालूम था.
5: तो उनका नाम बाबा कैसे आया फिर?
4: कुछ बता नहीं सकते.
5: कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार अनुकल्प से आपकी?
4: हमारी बात हुई थी आखिरी 30 तारीख.
5: 30 तारीख को
4: जब हमारा यहाँ भंडारा था.
5: अच्छा अच्छा, यहाँ कथा यही हुआ था?
4: कथा यही हुई.
5: काफी लोग भी आए थे? आपने ही भागवत सुना था?
4: हमने. मैं अभी
5: जी जी जी जी.
6: आप भाई हैं?
5: जी.
6: आपका क्या नाम
7: बताइए?
6: नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ. मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
7: वो सब फंसाया गया और क्या है.
6: हाँ,
7: फंसाया गया और क्या है.
6: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
7: मनीष को अभी 1 महीना काम करे हुआ है.
6: बस
7: बस.
6: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार है ना?
7: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं. बताइए.
6: अच्छा बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है,
1: भाई के बेटे।
6: अच्छा अच्छा, तो मतलब एक ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था?
7: काम काउंटिंग का ही था, एक ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ देखे, लेकिन बस फंसाया जा रहा है। और कोई बात नहीं।
6: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
7: अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे
6: बैंक की तरफ से।
7: जी,
6: टिन्नू की भूमिका नहीं थी?
7: नहीं, इसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी।
6: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
7: मनीष की उम्र अभी 20 साल।
6: 20 बस?
7: बस।
6: अच्छा, तो इसमें सिर्फ एक महीना हुआ? क्योंकि
7: सिर्फ एक महीना हुआ, सिर्फ एक महीना, यही केवल जो है मई में काम किया बस।
6: मई में
7: बस?
6: अच्छा, उसके पहले वो?
7: उसके पहले कुछ नहीं करता था।
6: पढ़ाई?
7: पढ़ाई करते थे।
6: कहाँ
7: भी उसकी पढ़ाई चल रही है, साकेत से।
6: साकेत से क्या कर रहा है?
7: बीए।
6: बीए? ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं।
7: ऐसा कुछ नहीं है।
6: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
7: ये सब फंसाया गया और क्या भैया।
2: And the Ram Mandir donation theft row has now snowballed into a full-blown political slugfest. After Akhilesh Yadav questioned the motto of the BJP, he has stated that donation first is the motto of the Saffron Party and not nation first. He further took a dig and said that neither religion nor shame in BJP. Yogi Adityanath accused the Samajwadi Party of firing on Ram devotees during its tenure, said the party's politics revolves around appeasement, asked Akhilesh Yadav to seek atonement by visiting Ram Lalla, and asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court monitored probe. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumors.
8: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
9: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
10: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो वो आप लोगों के वहां हो गया, बताइए हो पाएंगे? जो श्री राम की को जगा लिया, जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं, हम सबकी कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्रीराम जी का लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया। जिसका सहारा लेके ये सरकार ले आए उन्हीं का धोखा देने का हमने काम किया है।
1: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
2: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस टुक बोथ द अक्यूज सिया गोयल एंड चेतन चौधरी टू लोहागढ़ फोर्ट टू रिक्रिएट द क्राइम सीन। The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan to delay Sia's marriage. Police have also seized Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
11: Been recreated. The accused has taken us to the places like how it all happened, whose role was what in this whole incident, that's all.
12: वह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहां पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।
13: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
12: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया।
14: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
15: मुझे जस्टिस चाहिए फॉर केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैनल किया उन लोगों ने, थैंक्स यू।
2: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side. Stay tuned.

0: Hawaii on Wednesday. It's the largest international maritime exercise in the world, which will see the participation from 30 nations, hosted by the U.S. Navy's Pacific Fleet. The exercise aims to improve operability and war fighting skills among the participating nations. Leaving you with a special report.
1: 30 nations, over 30 surface ships, 5 submarines, 15 national land forces, more than 206 aircrafts, and 30,000 personnel all in one place, with one aim: to conduct the largest international maritime exercise in the world. The 2026 edition of RIMPAC, or Rim of the Pacific Summit, has begun in Hawaii. Hosted by the US Navy's Pacific Fleet from June 24th to July 31st, the exercise this year focuses on the theme Partners Integrated and Prepared.
2: The purpose of RIMPAC is to build on those relationships, improve interoperability, and enhance the readiness of participating forces to promote maritime security and regional stability in a free and open Indo-Pacific.
1: RIMPAC, or Rim of the Pacific, is the world's largest international maritime warfare exercise. It was started in 1971 as an annual Cold War-era maritime training event, with 5 nations including Australia, Canada, New Zealand, the United Kingdom, and the United States hosted every 2 years. The exercise aims to improve interoperability and warfighting skills among participating nations, all while promoting a free Indo-Pacific region. This year marks the 30th edition of RIMPAC. With 30 nations, over 30 surface ships, 5 submarines, 15 national land forces, more than 206 aircraft, and 30,000 personnel training and operating in and around the Hawaiian Islands. The RIMPAC exercise has consistently seen growing participation from nations over the years. India has also been an active participant in the exercise ever since 2014. In 2014, India joined the RIMPAC for the very first time when the indigenously built Shivalik-class stealth frigate INS Sahyadri took part in the exercise. 2 years later, in 2016, India participated in the exercise with INS Satpura, an indigenously designed 6,000-ton guided missile stealth frigate. In 2018, INS Sahyadri once again represented the country. India did not participate in RIMPAC in 2020 due to operational restrictions caused by the COVID-19 pandemic. In 2022, India participated with INS Satpura once again, along with Indian Navy's P-8I Maritime Patrol Aircraft. The last exercise came in 2024, where the Indian Navy deployed the multi-role stealth frigate INS Shivalik. The RIMPAC exercise builds on the success of previous exercises that has united allies to showcase the capability of maritime forces. India's involvement highlights the strengthening multilateral ties and stands testimony to the Indian Navy's capability to operate in any part of the world. Bureau Report, NDTV World.
3: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
4: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal, and Saturday, How To.
3: The show that sets the prime time agenda.
4: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
3: Join me, Harisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
5: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the 6th year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
6: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
7: Higher ed, check the audio. Yeah,
6: let's do it. Let's start.
8: Breaking story, we're jumping straight into it.
6: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
9: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
6: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
10: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
9: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
6: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
5: Front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
11: So many attacks.
5: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
11: It's incredible.
5: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
11: Welcome to Left, Right, and Center.
5: Hard facts.
11: War-struck country.
5: Hard questions.
11: In the Ukraine.
5: 30 years of trust.
12: In the Kargil area.
11: North Ukraine.
13: In France. In Italy.
11: At Srinagar.
13: I am Srinagar.
11: Vishnu Shom for NDTV.
5: Vishnu Shom. Only on NDTV.
14: Literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
15: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
14: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
15: I would say it prepares the mind more than it prepares the body.
0: Hello and welcome to TV 24/7 and Sony. A quick check of the headlines. SIT intensifies probe in Ram Mandir theft case. SIT to probe vehicle entry logs, lens on vehicles exempted from checks. Sources say attempts were made to dispose of the stolen funds. UP CM Yogi versus Akhilesh in fierce war of words over Ram Mandir theft. Yogi reminds Akhilesh of bullets fired on Ram devotees. Akhilesh calls the theft mockery of faith. And cops recreate crime scene at Lohagarh Fort. Shocking details emerge in Ketan murder case. Allegedly, Sia and Chetan googled ways to kill. The two killed Chetan to delay Sia's marriage. Investigation claims. And nature's fury batters Sikkim. Bridge washed away, road connectivity hit, and villages isolated after bridge collapse. West Asia tensions flare again. U.S. launches fresh strikes on Iran, accuses Tehran of violating ceasefire. And Seychelles confers Guardian of the Blue Horizon title to Prime Minister Modi, its highest honor for environmental leadership. Award recognizes Prime Minister Modi's sustained focus on sustainable development and global vision for green growth. A massive political and religious storm has hit Ayodhya. The Ram Trust has confirmed that Champat Rai and Anil Mishra submitted their resignations while the role of Tinnu Yadav is still under scan. NDTV has learned from top sources that cash has been recovered from key accused. While the trust deliberates on these exits, they also assured all the devotees that the donated ornaments are safe and accounted for. Meanwhile, investigation points directly to voucher handler Anukalp Mishra as the mastermind. Investigation further revealed he manipulated donation records, routed funds and blocked CCTV cameras during the counting process. As the probe intensifies, family of the accused Manish Yadav has claimed that he is being framed and made a scapegoat.
16: The Ram Temple donation theft case is being opened with layer by layer, and amidst these layers, there's a new layer that has walked into this entire special investigation team's periphery, which clearly means that the framework of the vehicles that were allowed into the Ram Temple under special permissions is now in the purview of this special investigation. Keeping in mind that there were certain vehicles that were not mentioned in the log sheet or were mentioned with a specific instruction of not being checked at regular intervals. Why were such instructions given? What was in mind? Who was the person behind it? And why was this considered as an SOP for certain vehicles? Was it being used for ferrying something inside or outside the Ram temple is yet to be ascertained. What was being carried is yet to be ascertained. However, amidst all this, there's one thing is for sure, that the SIT has much more to investigate, not just inside the temple, but also related to the SOPs that were flouted regularly on ground zero in the temple. With camera person Mukesh Kumar, this is Manogya Loiwal in Ayodhya for NDTV.
12: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया।
13: कहाँ पे?
12: फैजाबाद में।
13: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
12: किसी स्कूल में
13: जी।
12: तो वहाँ से पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो, बस इतने जानता हूँ।
13: राम मंदिर में काम भी करते थे वो?
12: इसका हमें कुछ नहीं मालूम था।
13: तो उनका नाम बाबा कैसे आया फिर?
12: कुछ बता नहीं सकते।
13: कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार अनकल्प से आपकी?
12: हमारी बात हुई थी आखिरी 30 तारीख।
13: 30 तारीख को
12: जब हमारा यहाँ भंडारा था।
13: अच्छा अच्छा, यहाँ कथा यही हुआ था?
12: हाँ, कथा यही हुई।
13: काफी लोग भी आए थे? आपने ही भागवत सुना था?
12: हमने मैं अभी
13: जी जी जी जी
17: आप भाई हैं?
13: जी।
17: आपको क्या नाम
18: बताइए?
17: नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
18: वो सब फंसाया गया और क्या
17: है। हाँ,
18: फंसाया गया और क्या है।
17: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
18: मनीष को अभी 1 महीना काम करे हुआ है
17: बस।
18: बस
17: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
18: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं। बताइए।
17: अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है?
18: नहीं।
17: भाई के बेटे। अच्छा अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था?
18: काम काउंटिंग का ही था, 1 ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं।
17: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
18: अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे।
17: बैंक की तरफ से?
18: जी।
17: टिन्नू की भूमिका नहीं थी?
18: नहीं, इसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी।
17: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
18: मनीष की उम्र अभी 20 साल।
17: 20 बस?
18: बस।
17: अच्छा, तो इसमें सिर्फ 1 महीना हुआ? क्योंकि
18: सिर्फ 1 महीना हुआ, सिर्फ 1 महीना, यही केवल जो है मई में काम किया बस।
17: मई में
18: बस?
17: अच्छा, उसके पहले वो?
18: उसके पहले कुछ नहीं करता था।
17: पढ़ाई?
18: पढ़ाई करते थे।
17: कहाँ
18: भी उसकी पढ़ाई चल रही है? साकेत से।
17: साकेत से? क्या कर रहा है?
18: बीए।
17: तो ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं।
18: ऐसा कुछ नहीं है।
17: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
0: And the Ram Mandir donation theft row has now snowballed into a full-blown political slugfest. After Akhilesh Yadav questioned the motto of the BJP, he has stated that donation first is the motto of the Saffron Party and not nation first. He further took a dig and said that neither religion nor shame in BJP. Yogi Adityanath accused the Samajwadi Party of firing on Ram devotees during its tenure, said the party's politics revolves around appeasement, asked Akhilesh Yadav to seek atonement by visiting Ram Lalla, and asserted that Ayodhya's identity does not need the approval of the Samajwadi Party. Opposition, meanwhile, continues to demand a Supreme Court-monitored probe. The Ram Temple Trust has hit back, alleging that anti-social elements are spreading false rumors.
19: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए। एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें।
20: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
21: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो वो आप लोग के काम हो गया, बताइए हो पाएंगे? जो श्री राम की को जन्म दिया, जो हमारे तुलसी है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं है, हम सबकी कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्री राम जी का इन लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
22: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
0: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस टुक बोथ द अक्यूज सिया गोयल एंड चेतन चौधरी टू लोहागढ़ फोर्ट टू रिक्रिएट द क्राइम सीन। The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan to delay Sia's marriage. Police have also seized Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
23: Been recreated. The accused has taken us to the places like how it all happened, whose role was what in this whole incident. That's all.
24: सुबह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहां पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।
25: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
24: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया।
26: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
27: मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और केतन के लिए जस्टिस चाहिए। थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैनल किया उन लोगों ने, थैंक्स यू।
0: स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड।